0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: क्या होता है जब एक लॉ एनफोर्सिंग लॉ अबाइडिंग पुलिस ऑफिसर को प्यार हो जाता है एक ड्रग स्मगलिंग हॉटी चिक से. दैट इज द प्रेमिस ऑफ द स्टोरी जो मैं अभी दो दिन पहले देख रही थी जिसका नाम है चुंकिंग एक्सप्रेस. तो ये फिल्म ना इंग्लिश में है ना हिंदी में है. इट इज डायरेक्टेड बाय अ हांगकांग डायरेक्टर कॉल्ड वॉन कार वाई. और ये फिल्म मैंडरिन और कैंटनीज के बीच में स्किप करती है तो आपको सब टाइटल्स पढ़ने पड़ेंगे. बट क्या पिक्चर बनाई है. मतलब आप सोचो कि आप एक पुलिस ऑफिसर हो, आपको हर चीज राइट साइड ऑफ द लॉ में पसंद है, लेकिन को प्यार हो जाता है एक ऐसे इंसान से जिसे वास्ता ही सिर्फ लेफ्ट साइड ऑफ द लॉ से. हाउ डू दीज टू पीपल फॉल इन लव एंड कीप द रिलेशनशिप अलाइव. इन फैक्ट कई बार जब मेरे एक्स बॉयफ्रेंड्स को मेरा भाई देखता था ना तो मुझे कहता था कि रोशी एक बर्ड और एक फिश मोहब्बत तो कर सकते हैं लेकिन अपना नेस्ट कहाँ बनाएंगे. तू अपने से इतने विपरीत लड़कों को कहाँ से ढूंढ कर लाती है और इन रिलेशनशिप्स को सस्टेन करने की कैसे आकांक्षाएं रखती है. आई लव माई न्यू एंड इम्प्रूव्ड हिंदी दीज डेज बट दैट सेड. क्या आपको भी किसी से प्यार हुआ है जो बिल्कुल आपके ऑपोजिट है. यू हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्ट फॉर द मोहब्बत दैट यू फील इन योर हार्ट फॉर देम. अगर हाँ देन आई वॉन्ट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड tell me about it. Hit me up on Insta ya FB. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and do whatever you have to do. Lekin kahin mat jana jana. Kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi. It's hot.

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार. हेलो
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब. इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से. मत करो उसको वहां से. हेलो हेलो भाई साहब.
1: हाँ जी बोलो.
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते.
2: एक सेकंड होल्ड करना. उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे. मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान. भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ. ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे. ये गिर गया है और इसको उठाना है यार. ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार. कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको बता दूं. नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम.
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को. हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार. ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है.
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप.
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार. अब ये उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे. तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए. तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी.
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स. तो आप ऐसे उठाना है इसको.
1: हाँ
2: सामान उठवा.
1: क्या मजाक कर रहा है?
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार. आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ. सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है.
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है. हेलो
3: हेलो
1: हेलो.
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं. मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था. क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं. हेलो
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: Inefficient,
8: very complex,
9: clumsy or
10: confusion ही confusion.
6: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
11: जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण. शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ. शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति. अधिक जानकारी के लिए 7323578200. जय गुरुदेव.
12: नो
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार.
13: अब मिर्ची खा.
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक टाइम पर, सिंगल टाइम पर आपके दो दो बॉयफ्रेंड्स हैं और ये आपके बॉयफ्रेंड नंबर वन और बॉयफ्रेंड नंबर टू को नहीं पता है, बट कई बार यू फील गिल्टी और आप इसके बारे में कन्फेस करना चाहते हो, बट करो तो किसको करो, बताओ तो किसे बताओ, जाओ तो कहाँ जाओ?
2: सीक्रेट बॉक्स.
1: Well, I think I've answered that question for you. You can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ राइट नाउ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाई मिस्ट्री कॉलर.
3: हाई रोशी,
1: क्या हाल है आपके?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ.
1: अच्छा, और आपका कन्फेशन वो तो आपसे भी ज्यादा बढ़िया है जो आपने मुझे बताया. जरा आप खुल के संक्षिप्त में बताओ कि क्या है आपका कन्फेशन.
3: एक्चुअली पता है क्या हुआ है?
1: क्या?
3: कि मेरा एक हमारा एक फ्रेंड है, मतलब काफी जिगरी दोस्त है, तो उसने ना अभी रिसेंटली शादी करी है. और हम लोगों को बताया उसने बाद में, जब उसने शादी करी तो उसके बाद हमें मिलवाया. वो वहाँ जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बैक स्टोरी दे देता हूँ आपको कि हम लोग चार पांच ही, लाइक ये यू नो ये जो मसाज पार्लर्स वगैरह होते थे ना,
1: नॉटी वाले.
3: हाँ मतलब नहीं, मसाज वाले ही.
1: कल पहला हुई थी मैं. अच्छा ठीक है, ओके. मसाज पार्लर्स देन.
3: मसाज पार्लर्स में हम जाते थे, यू नो उसी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ऐसा ऐसा होता है, मसाज पार्लर्स होता है. तो हमने कहा चलो ठीक है. तो हम गए वहाँ पे, हम जाने लग गए फिर. मतलब अच्छा लगता था तो जाते थे. तो ऐसे गए तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो ये बोलते थे यार ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को लड़की, और उसी के पास ही ज्यादा जाता था मसाज करवाने. अब वो जब नहीं होता तो हम भी चले जाते थे. तो ये चला था, अच्छी लगती थी बोला. मैंने कहा हाँ ठीक है, अच्छी लगती होगी ये वो. बट अब कट टू अपनी उस वाले प्रेजेंट उसमें आते हैं. अब जब उसने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उसने बोला यार भाई मैंने तो भक्के शादी कर ली है, ऐसा ऐसा तुम आ जाओ. और जब हम मिलने गए तो वो जो मसाज वाली जो लड़की थी ना, उसने उससे ही शादी कर ली है. और अब वो मसाज वाली जो लड़की है वो हमारी भाभी है प्रेजेंट में.
1: करेक्ट.
3: तो हमको अब इतना गिल्टी फील, मतलब गिल्टी क्या बताऊं, अब कैसे अब हम कैसे फेस करें. मतलब यू नो मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब भाभी को क्या बोलूं, पाए लागू बोलूं या गले लागू. यू नो ये ऐसा सच्चाई है जो सबको पता है, बट लेकिन हम जा भी नहीं सकते हैं उसके घर. बड़ा ही अजीब सा लगता है. मतलब भाभी को हमारे बारे में सब पता है, हमें भाभी के बारे में सब पता है.
1: आपको रोशिफाई कर दूं? मीठा मीठा
3: सिचुएशन से मुझे निकालो यार.
1: मैं क्या निकालूं, आप खुद ही इसमें पड़े थे. विद अ हैप्पी एंडिंग, हियर इज टू योर हैप्पी एंडिंग.
4: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: आपसे बात करके बड़े मजे आए मुझे. मेरी एंडिंग हैप्पी हो गई, बताओ, बिना आपको देखे. थैंक यू वेरी मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी मिस्टीरियस बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598 on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot in association with World Vegan Vision.
3: It's 8:30 p.m. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
6: Honey, it's 11 p.m., our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh, honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes. Yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi kha.
13: Radio Mirchi, it's hot.

0: यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
3: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
2: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: Disclaimer, ये एक controversial opinion होने वाला है, but just because I'm almost signing up a new lease for a नया घर, I was thinking to myself, जैसे एक लीज में घर के लिए एक टर्मिनेशन क्लॉज होता है, एक फॉरफीचर क्लॉज होता है कि अगर हमारा नहीं चला टेनेंट और लैंडलॉर्ड का रिलेशनशिप तो हम कैसे इससे एग्जिट करेंगे दोनों प्यार प्यार से. वैसे ही जब शादी कर रहे होते हैं तो आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट अ प्रीनप. प्रीनप में तो ये होता है कि अगर शादी टूट गई तो ये तुझे मिलेगा, ये मुझे मिलेगा. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट शादी में या लिव इन रिलेशनशिप में जाते समय इमेजिन अगर एक टर्मिनेशन क्लॉज हो कि अगर हम दोनों में से कोई खुश नहीं है तो आप मेरे लिए ये करेंगे, मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे नहीं आएंगे और मेरे पास हक है आपको ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक करने का. सोचो इसके बारे में. साउंड्स रियली क्रेजी एंड कॉन्ट्रोवर्शियल, लेकिन अगर कपल्स बिफोर मूविंग इन टुगेदर ऐसी एक लीज ऑफ टर्मिनेशन साइन कर लें, देन ब्रेकिंग अप वुड बी सो लेस हार्ट ब्रेकिंग एज अपोज टू व्हाट इट इज राइट नाउ. और अगर आप मेरे साथ सहमत हैं और अगर सहमत नहीं है तो भी, वाई डोंट यू हिट मी अप विद योर ओपिनियन इंस्टा पर या FB पर एंड लेट्स गेट टॉकिंग अबाउट इट. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड डार्लिंग, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड के ताने आपको कांटों की तरह चुभने लगे हैं, ये वही गर्लफ्रेंड है जिसके साथ आपने शादी करने के सपने देखे थे, तो हो सकता है कि आपके घर में जो कैक्टस है ना, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। क्योंकि वास्तु के हिसाब से जिस भी घर में कैक्टस होता है उसमें रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही चुभने वाली दरारें आ जाती है। सो बेसिकली एक तो ना गर्लफ्रेंड के साथ बिहेवियर सेल्फ किया करो, ये तो मैं पहले ही कह रही हूँ, और दूसरा ये कैक्टस सिचुएशन को जरा गौर से देखना, अगर घर में है तो निकाल दो और घर में थोड़ी शांति आ जाएगी। नॉट शांति आपके सोसाइटी की हॉट बेब, शांति एज इन पीस, तमीज में रहो आप। और अगर जिंदगी में और कोई भसड़ हो रही है, देन फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एम कैक्टस फ्री बेबी, विंक विंक। ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchu.
1: Iscabana, Puscabana, Sacabana. Rabana. Burga, Burga. La Virpa, la Burga. Mirchi, Burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद लेना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कप से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो,
2: नहीं नहीं
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: अगर आप निहायत ही ऑपोजिट टू मी हो, यानी कि कंप्लीटली अनरोमांटिक एंड यू डोंट वांट टू हैव लाइक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्वर्सेशंस और आप सेंसिबल हो और टू द पॉइंट बातें करते हो, कितने बोरिंग इंसान हो, लेकिन अगर ये सब है आपकी जिंदगी में तो आप एक टॉरस को डेट कर लो, बिकॉज टॉरियंस को बिल्कुल यही पसंद है, दैट यू नो लाइक इनक्रेडिबल पॉइंट वाली कॉन्वर्सेशंस. और ऐसे ही टॉरस को मिलकर जब आप बोर हो जाओगे और उसके बाद उसको कैसे डंप करना है ये पूछना होगा, तो हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और मेरे साथ ना आई एम गोइंग टू कॉल प्रांशु, जिन्होंने अपना नंबर भेजा और कहा लेट्स चैट बेबी.
2: हेलो
1: हेलो,
2: हाँ जी कौन?
1: हम बोल रहे हैं. हम
2: कौन?
1: तूने मेरी आवाज नहीं पहचानी प्रांशु, रोशी बोल रही हूँ.
2: अच्छा हाँ, पहचान लिया.
1: इतनी देर लगती है, ये है तेरा प्यार?
2: हाँ, मैं तो व्हाट्सएप के लिए बोला था, आपने तो कॉल ही कर दिया.
1: अच्छा, पहले हम व्हाट्सएप पे करने वाले थे ये?
2: नहीं नहीं, मतलब मैंने यहाँ नॉर्मल बातचीत
1: करो ना फिर.
2: और क्या कर रहे हो आप?
1: मैं तो चिल कर रही हूँ, आप क्या कर रहे हो? सिंगल हो आप?
2: हाँ सिंगल ही हूँ, चिल कर रहा हूँ. मैं भी.
1: तो कितने साल की?
2: मैं 25.
1: तो गर्लफ्रेंड नहीं है आपकी?
2: ये गर्लफ्रेंड आती आती रहती है.
1: तो लास्ट कब आई थी आपकी जिंदगी में गर्लफ्रेंड?
2: लास्ट हो गए होंगे 6 मंथ.
1: 6 मंथ हो गए आप 6 मंथ से सिंगल हो? ओह माय गॉड.
2: हमारे कोर्स में ज्यादा टाइम से गर्लफ्रेंड रहती थी.
1: आप कौन, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो?
2: नहीं, MBBS.
1: अच्छा, तो आप दिल के डॉक्टर बनने वाले हो?
2: मुझे बनना है कार्डियोथोरेसिस सर्जन.
1: तो आप में और मेरे में क्या सिमिलैरिटी होगी जब आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बन जाओगे? तो
2: आप में मेरे में आप लोगों को खुश करती हो. मैं उन्हें
1: नहीं बेवकूफ, आप लोगों के दिल का ख्याल रखते हो और मैं लोगों के दिल का ख्याल रखती हूँ.
2: ये तो है
1: करेक्ट. बट आप ऐसे मेरा दिल तोड़ रहे हो. आपके पास 3 मिनट है मुझे इम्प्रेस करने के लिए और आप कुछ नहीं कर रहे हो इन 3 मिनट में.
2: अच्छा नहीं हो रहा?
1: नहीं, करो कुछ मुझे इम्प्रेस करने के लिए यार. ऐसे काम नहीं बन रहा है आपका, समझ में नहीं आ रहा आपको?
2: अच्छा यार, ऐसे ना मुझसे कॉल पे इतना इंप्रेस वाली चीज होती नहीं है. अगर आप सामने से कभी मिलो तो मैं जरूर ट्राई कर सकता हूँ.
1: अच्छा ठीक है, मान लो कि मैं आपके सामने हूँ, फिर आप क्या करोगे?
2: मैं आपके लिए एक, अच्छा रोज आपको पसंद है?
1: मुझे फूल पसंद, आई मीन आई लाइक फ्लावर्स एज दे आर, बट मुझे काटे हुए फूल नहीं पसंद.
2: काटे में नहीं पसंद?
1: नहीं.
2: तो ठीक है, मैं आपको बिल्कुल पौधा लाके दूंगा गमले के साथ.
1: दिस इज सच एन ओल्ड आइडिया, सो मेनी बॉयज हैव ट्राइड इट. नेक्स्ट आइडिया, ये तो फेल हो गया भाई.
2: अच्छा ये तो फेल हो गया. अरे कोई नहीं, आप कहो तो मैं कैक्टस का पौधा लाके दूं आपको.
1: यार अब मुझे ना समझ में आ रहा है कि आप सिंगल क्यों हो पिछले 6 महीने से. इट्स नॉट बिकॉज कि आप अपने आप को रिज्यूविनेट कर रहे हो और उसके बाद आप एक और गर्लफ्रेंड बनाओगे, बट अगर आप ऐसे कोशिश कर रहे हो ना बंदी को इम्प्रेस करने से, तो वो नहीं होने वाली है. आपको एक टिप दे
2: दूं यार, अभी ना मेरे पास पिकअप लाइन नहीं आ रही कोई. अगर दिमाग में आती ना, मैं
1: और आपको लगता है कि मेरे जैसी लड़की एक पिकअप लाइन से मान जाएगी?
2: नहीं, पर आप तो वही सुनना चाह रहे हो ना.
1: नहीं जी, मैं वो सुनना नहीं चाह रही थी और मैं ये कहने की कोशिश कर रही थी दैट इफ यू वांट टू स्कोर विद अ वुमन, यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ एंड यू डोंट हैव टू बी क्लेवर, यू जस्ट हैव टू बी रियल. रियल होना कितना मुश्किल है इस दुनिया में.
2: आई एम जस्ट बीइंग मायसेल्फ ओनली.
1: क्यूट तो बहुत हो आप, फालतू में मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ ऐसे ही. बट इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. अगली बार ना मैं ऐसे बिना बताए फिर से फोन करूंगी और इस बार पहले 2 मिनट में मुझे इम्प्रेस कर देना, ठीक है?
2: ओके बिल्कुल, अगली बार मैं लाइन सोच के रखूंगा.
1: लाइन सोच के रखना ताकि मैं आपको रोशिफाई कर दूं, ठीक है?
2: ओके
1: बाय. अगर आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो बट यू डोंट हैव अ पिकअप लाइन हैंडी, व्हाई डोंट यू कीप वन ऑलरेडी, बिकॉज ना जाने विदाउट टेलिंग I might pick up the phone and call you. And if you want me to call you, why don't you hit me up Insta par ya FB par. I'll be happy to talk to you. Mera naam hai Mirchi Roshi. Naam ki spelling hai ROCHIE. So do whatever you have to do. But kahin mat jana. Kyunki wapas to yahi hai aana. Sunte rao Mirchi. It's hot.
3: Mirchi. Fresh maal.
4: Retro magic aur dance floor energy ke saath. Suno chunari chunari. Let's go. Achha.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें। हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
6: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
5: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
7: Ise apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chabi nikal kar hi kholunga.
5: Moral of the story, number 1 sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: ओ चन्न दी कुड़ी, ओ चन्न दी कुड़ी।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ओके, आई हेट टू साउंड इनसेंसिटिव, बट कई बार मेरी जिंदगी में ऐसे हुआ है कि मेरा ब्रेकअप हुआ और मुझे हाँ थोड़े टाइम के लिए बॉयफ्रेंड की काफी याद आई, लेकिन उसके बाद बॉयफ्रेंड की गाड़ी और उसके ड्राइवर की बहुत याद आई. बिकॉज आई एम लाइक यार, वो तो हर जगह अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज देता था और अब तो मेरी जिंदगी में वो है भी नहीं. बट आई प्रोमिस यू, मैंने कभी एक शुगर डैडी की तलाश नहीं की, एज मच एज शुगर डैडी के काफी बेनिफिट्स होते हैं. लेकिन अनलाइक मी, आप एक ऐसे इंसान हो हु genuinely just likes the good life and found yourself a sugar daddy or a sugar mama. I think we should totally talk about your story, Morning Glory. Aur wo karne ke liye, why don't you hit me up Insta par ya FB par. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai R-O-C-H-I-E. So go ahead and tell me all your sugary stories. Lekin kahi mat jana, kyunki wapis to yahi hai aana. Sunte raho Mirchi, it's hot. Dos, dos, dos.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: रोशी, मुझे अपने जिम से और अपनी होने वाली गर्लफ्रेंड से इक्वली प्यार है और मैं पहली डेट पर जा रहा हूँ उसके साथ, लेकिन राइट आफ्टर द जिम. प्रॉमिस मैं नहाऊंगा, बट इज देयर एनी वे टू मेक श्योर दैट आई एम स्मेलिंग लाइक एज ब्यूटीफुल एज आई कैन स्मेल? ये मैसेज मुझे संजय ने लिखकर भेजा. आई लव यू सो मच.
2: रोशी के DM से.
1: आई लव यू इसलिए क्योंकि आप अपने जिम और फिटनेस को लेकर काफी सीरियस लगते हो, विच इज अ ग्रेट थिंग संजय. और जब आप अपनी टू बी गर्लफ्रेंड को इन योर वर्ड्स मिलने जा रहे हो ऑन द फर्स्ट डेट, माई सजेशन इज कि नहाने के बाद ना जो भी आपके पास डिओड्रेंट है या परफ्यूम है उसे लगाने से पहले अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज कर लेना. मॉइस्चराइजेशन के बाद अगर परफ्यूम लगाओ तो उसकी स्मेल ज्यादा देर तक लॉक्ड इन टू द बॉडी रहती है. एक तो ये, दूसरा अपने पल्स पॉइंट्स पर, यानी कि अपने कान के पीछे, नेक के पल्स पॉइंट्स पर, अपनी रिस्ट पर, अपने नीज के पीछे, यहाँ खास करके परफ्यूम स्प्रिट्स करना. क्योंकि यहाँ अगर आपने परफ्यूम लगाया तो ना कि सिर्फ वो ज़्यादा देर तक लास्ट करेगा, बट यू विल आल्सो स्मेल रियली इनक्रेडिबल काफ़ी दूर से. इसे ट्राई करके देखो. इट्स ऑलवेज वर्क फॉर मी. आई होप इट वर्क्स फॉर यू. एंड ऑनेस्टली, ये ट्रिक ये नहीं है कि आप कितना खूबसूरत स्मेल कर रहे हो. ट्रिक ये है कि आपका दिल कितना बड़ा है और आपकी वाइब कितनी सॉर्टेड है. गेट योर वाइब ऑन एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस. और अगर आपको भी संजय की तरह हेल्प चाहिए, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, प्यार से लोग मुझे ब्रोशी कहते हैं. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आई प्रॉमिस आई ट्राई एंड हेल्प यू आउट. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: virba la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहा है?
2: सर मैं एक्चुअली आसर है, वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूं ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूं जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गा के सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, भेज दो।
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, ताने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया।
1: क्या
2: सर?
1: मत
2: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा।
1: सुन ले बात करिए जो बजा रहा है ये बंद कर
2: सर, बोलिए।
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात
2: सर?
1: और जिसने भी ये नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Sweet के साथ only on मिर्ची It's hot
1: Yeah पटाक
2: तेरा क्या होगा कालिया
3: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
2: अब मिर्ची खा
4: Radio मिर्ची It's hot

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: एक टाइम पर, सिंगल टाइम पर आपके दो दो बॉयफ्रेंड्स हैं और ये आपके बॉयफ्रेंड नंबर वन और बॉयफ्रेंड नंबर टू को नहीं पता है, बट कई बार यू फील गिल्टी और आप इसके बारे में कन्फेस करना चाहते हो, बट करो तो किसको करो, बताओ तो किसे बताओ, जाओ तो कहाँ जाओ?
0: सीक्रेट बॉक्स.
1: Well, I think I've answered that question for you. You can hit me up Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ राइट नाउ है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय रोशी,
1: क्या हाल है आपके?
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ.
1: अच्छा, और आपका कन्फेशन वो तो आपसे भी ज्यादा बढ़िया जो आपने मुझे बताया. जरा आप खुल के संक्षिप्त में बताओ कि क्या है आपका कन्फेशन.
2: एक्चुअली पता है क्या हुआ है?
1: क्या?
2: कि मेरा एक, हमारा एक फ्रेंड है, मतलब काफी जिगरी दोस्त है, तो उसने ना अभी रिसेंटली शादी करी है. और हम लोगों को बताया उसने बाद में, जब उसने शादी करी तो उसके बाद हमें मिलवाया. एंड वो वहां जाने से पहले मैं एक थोड़ी सी बैक स्टोरी देता हूँ आपको कि हम लोग चार पांच जी, लाइक ये यू नो, ये जो मसाज पार्लर वगैरह होते थे ना,
1: नॉटी वाले.
2: हाँ, मतलब नहीं, मसाज वाले ही.
1: कल पहला हुई थी मैं. अच्छा ठीक है, ओके. मसाज पार्लर्स, देन
2: मसाज पार्लर्स में हम जाते थे, यू नो, उसी ने ही इंट्रोड्यूस कराया था कि यार ऐसा ऐसा होता है, मसाज पार्लर्स होता है. तो हमने कहा चलो ठीक है. तो हम गए वहाँ पे, जाने लग गए फिर, मतलब अच्छा लगता था तो जाते थे. तो ऐसे गए तो वहाँ पे एक लड़की थी, तो ये बोलते थे यार ये बहुत अच्छी लगती है मेरे को लड़की, और उसी के पास ही ज्यादा जाता था मसाज करवाने. अब वो जब नहीं होता था हम भी चले जाते थे, तो ये चला था, अच्छी लगती थी, बोला मैंने कहा हाँ ठीक है अच्छी लगती होगी ये वो. बट अब कट टू अपनी उस वाले प्रेजेंट उसमें आते हैं. अब जब उसने इंट्रोड्यूस कराया, मतलब उसने बोला यार भाई मैंने तो भक्के शादी कर ली है, ऐसा ऐसा तुम आ जाओ. और जब हम मिलने गए तो वो जो मसाज वाली जो लड़की थी ना, उसने उससे ही शादी कर ली है. और अब वो मसाज वाली जो लड़की है वो हमारी भाभी है प्रेजेंट में.
1: करेक्ट.
2: तो हमको अब इतना गिल्टी फील, मतलब गिल्टी क्या बताऊं, अब कैसे, अब हम कैसे फेस करें, मतलब यू नो मेरे लिए ऐसी सिचुएशन हो गई कि अब भाभी को क्या बोलूं, पाए लागू बोलूं या गले लागू. यू नो ये ऐसा सच्चाई है जो सबको पता है, बट लेकिन हम जा भी नहीं सकते हैं उसके घर, बड़ा ही अजीब सा लगता है. मतलब भाभी को हमारे बारे में सब पता है, हमें भाभी के बारे में सब पता है.
1: आपको रोशिफाई कर दूं, मीठा मीठा
2: सिचुएशन से मुझे निकालो यार.
1: मैं क्या निकालूं, आप खुद ही इसमें पड़े थे. विद अ हैप्पी एंडिंग, हियर इज टू योर हैप्पी एंडिंग.
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
1: आपसे बात करके बड़े मजे आए मुझे. मेरी एंडिंग हैप्पी हो गई, बताओ, बिना आपको देखे. थैंक यू वेरी मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी मिस्टीरियस बात है जो आप शेयर करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप बेबी, डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नाग।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

सेल्फ लव का सबसे बड़ा साइन होता है दैट यू आर ओनली इन प्लेसेस जहां आपको रिस्पेक्ट से और प्यार से ट्रीट किया जाता है. अब सोचो कि ऐसी जिंदगी में कौन से स्टेजेस थे जहां पर आप खड़े रहे या डटे रहे, जहां पर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिली और प्यार नहीं मिला. यू नो दिस इज समथिंग आई रेड वेरी रिसेंटली कि सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे तमीज से बात नहीं कर रहा है, कोई आपको प्यार नहीं दिखा रहा, कोई आपको नीचा दिखा रहा है, फिर भी हम कई बार वहां डटे रहते हैं इन द होप कि यार शायद ये इंसान बदल जाएगा, शायद ये सिचुएशन बदल जाएगी. व्हाइल इट इज वेरी गुड टू बी अ वॉरियर, लेकिन कई ऐसी जगहें होती हैं जो हमारे लिए बहुत नेगेटिव होती है, टॉक्सिक होती हैं, लेकिन हम उसे छोड़ते नहीं हैं सिंपली बिकॉज ये किताब में लिखा था दैट वी एक्सेप्ट द लव वी थिंक वी डिजर्व. कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ उतने ही प्यार के हकदार हैं जितना हमारी तरफ आ रहा है, और वो थोड़ा सा प्यार हो सकता है, शायद बेसिक से भी कम. सेल्फ लव का सबसे बड़ा ट्रेनिंग ग्राउंड ये होता है कि जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, जब कोई आपसे बदतमीजी से बात करता है, डोंट स्टैंड अप फॉर इट, लर्न टू से नो. ये मेरा 2025 का सबसे डिफिकल्ट लेसन है, ऑल्दो इट्स जस्ट बीन वन मंथ वन डे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दैट दिस इज अ लेसन आई एम गोइंग टू कैरी विद मी थ्रू आउट दिस एंटायर ईयर. जहां कोई ऐसा इंसान मुझे मिलता है जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता है, जो मुझे प्यार से ट्रीट नहीं करता है, आई एम नॉट गोइंग टू पुट अप विद दैट पर्सन और दैट सिचुएशन. और अगर आपके लिए भी जिंदगी में ऐसा ही कोई सेल्फ लव लेसन है दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद मी, वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफ पी पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एम वेटिंग जस्ट हियर फ्रॉम यू. एंड व्हाइल यू डू दैट, एक बात बताऊं, जिसके पास लव है उसके पास सब है, एंड आई लव यू लोड्स.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। Answers. It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है. Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए। इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है।

मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से री रिलीज हुए।

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ एट आरजे करेगा, बट जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंट डाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री, हिमेश रेशमिया का नया गाना रजत नागपाल राणा सोतल के साथ। गाने का नाम है शराब। हमने पिछले हफ्ते अज्यूम किया था ये गाना डेब्यू करेगा एंड इट इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi.
3: Iska bana, uska bana, sabka bana.
4: Kya bana?
3: Murga, murga. Naveed wala murga.
4: Mirchi murga.
5: हेलो.
6: हाय शिवानी.
5: हाय.
6: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
5: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
6: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
5: समाचार?
6: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
5: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
6: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
5: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
6: अच्छा.
5: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
6: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
5: फेवर,
6: मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
5: आपको लेनी है क्या?
6: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
5: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
6: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
5: आप सिर्फ
6: मेरी बात
5: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
6: ये सिर्फ 3
5: करता
6: हूँ. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
5: सिर पे करवा ले
6: शिवानी.
5: हेलो,
6: अगर आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
5: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
6: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
5: नहीं
6: नहीं, बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शेरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
5: कुकड़ू.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है.
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
0: एक ही होता है.
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स, गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि ये इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस काउंटडाउन पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलेवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi It's Hot.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's Hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Tera kya hoga, Kalia?
6: Sardar? मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
8: नंबर 4।

वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काए माई साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी है. It's an Anoop Jain song, उन्हीं की composition, a Coke Studio Bharat song. 18 हफ्तों से इस countdown पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से एक position नीचे drop होके this week on Gaana number 3. You are listening to Gaana Indie Top 10. बद्दी का नाम है कनिका. Enjoy. Number 3.

0: Ana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Ghana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. This is the show where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaano mein ek nayi entry ho chuki hai. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Now before we move on to the top 2 songs of the week, a quick recap right from the top. Gaana number 10 par tha Mika Singh Daya the rapper ka Chori. Chori karti jumper, chore ne de diya bumper. फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा और गाना नंबर 9. तेरे आगे पीछे लगे सुन दो ना छोरी का हर रंग. गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने. अदनान सामी का लिपस्टिक और गाना नंबर 7. लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले. दिलजीत दोसांझ का डीलर और गाना नंबर 6. जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबीना. उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी और गाना नंबर 5. दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3. कायर जो थे वो शायर बने अब क्या क्या करें ये इश्क में. गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैन हैटन
3: मैन आजमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

आपको पता है 1989 की फिल्म परिंदा का गाना प्यार के मोड़ पे छोड़ोगे जो बाहें मेरी, ये परिंदा मूवी के डायरेक्टर वैसे विधु विनोद चोपड़ा थे, लेकिन ये पर्टिकुलर सॉन्ग वॉज शॉट बाय संजय लीला भंसाली जो उस टाइम विधु विनोद चोपड़ा को असिस्ट कर रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। एंड विधु विनोद चोपड़ा वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय संजय लीला भंसाली कि फिर उन्होंने अपनी अगली फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के जितने भी सॉन्ग्स थे उनको शूट करने की जिम्मेदारी संजय लीला भंसाली को दी और यहीं से शुरुआत हुई संजय लीला भंसाली के आइकॉनिक सॉन्ग शूट्स की। उसके बाद तो फिर वो देख दनादन सिक्सर मारते रहे, लेकिन उनकी शुरुआत कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं परिंदा फिल्म के गाने शूट करने से हुई। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ये गाना देखें तो ध्यान रखें।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो,
2: उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता है
1: जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं, वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है।
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो,
1: कहाँ से बोल रहे
3: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: आपको पता है आनंद फिल्म जब बन रही थी तो डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने राइटर गुलजार साहब को एक बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। उन्होंने ये बताया था भाई कि फिल्म की शुरुआत में ही ऑडियंस को पता चल जाना चाहिए कि आनंद राजेश खन्ना साहब का किरदार जो है वो मर चुका है। सस्पेंस में नहीं रखना है कि ऑडियंस पूरी फिल्म में सोचती रहे कि ये जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे या क्या होगा। एंड आई थिंक दिस वर्क्ड ब्रिलियंटली फॉर दैट फिल्म, क्योंकि आपको पहले से पता है वो इंसान नहीं है और आप उसकी कहानी देख सुन रहे हो। एंड देन यू गेट टू नो कि ही वाज सो फुल ऑफ लाइफ, और आपको लगता है कि यार आपकी जो परेशानियां हैं फिर वो कितनी छोटी हैं। तो हम भी फुल ऑफ लाइफ हो सकते हैं, हर मोमेंट को जी सकते हैं जैसे आनंद जीता था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: जिंदगी कैसी है पहेली

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है अर्ली 80s में संजू बाबा, संजय दत्त और कपूर ब्रदर्स यानी कि रणधीर कपूर एंड स्पेसिफिकली ऋषि कपूर, इनका आपस में थोड़ा सा ऐसे झगड़ा हो गया था, खिटपिट हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और अक्सर बंदों के बीच में जब खिटपिट होती है तो क्या वजह होती है, बंदी वजह होती है, एंड दैट बंदी वॉज टीना मुनीम। सो उस टाइम पे संजय दत्त एंड टीना मुनीम वर डेटिंग, और उसी के साथ ये रूमर्स आए बिकॉज टीना मुनीम वॉज वर्किंग, हैड वर्कड विद ऋषि कपूर इन कर्ज मूवी, और रणधीर कपूर के साथ वो हरजाई नाम की मूवी में काम कर रही थी। तो ऐसे रूमर्स आए कि वो दोनों के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, समहाउ रणधीर कपूर के साथ भी और ऋषि कपूर के साथ भी, विच वॉज नॉट ट्रू। और इन रूमर्स ने संजय दत्त को बहुत अपसेट कर दिया और उनको ऐसा लगा कि ये रूमर्स कपूर ब्रदर्स ने फैलाए हैं, तो उनकी थोड़ी सी ऐसी खिटपिट हो गई। देन नीतू सिंह इंटरवीन्ड एंड उन्होंने ये सारा जो कंफ्यूजन था ये सॉल्व किया, और फिर उसके बाद वो लोग अच्छे टर्म्स पे हो गए। होता रहता है, चलता रहता है, फिल्मी दुनिया है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
3: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाय, वो टाइम जब हम फिल्म स्टार्स के अपने फेवरेट एक्टर्स एक्ट्रेसेस के पोस्टर्स अपने कमरों में लगाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अभी शायद एज अ स्क्रीन सेवर लगाते होंगे अपने फोन में उनकी फोटो। और क्योंकि एक टाइम पे पोस्टर्स बहुत पॉपुलर थे, तो कयामत से कयामत तक फिल्म जब हिट हो रही थी ना, तो इसको प्रमोट करने के लिए बॉम्बे में एक प्रमोशन की गई कि अगर आप कयामत से कयामत तक के 8 से ज्यादा टिकट खरीदेंगे तो आपको आमिर खान और जूही चावला का पोस्टर मिलेगा फ्री फ्री फ्री। एंड गेस व्हाट, इट वर्क्ड। ऑलरेडी लोग फिल्म देखने आ रहे थे, पोस्टर के लालच में और आ गए, फिल्म और हिट हो गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

आपको पता है 1973 की फिल्म लोफर, उसमें उफ धर्मेंद्र इतने हैंडसम लगते हैं भाई। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर धर्मेंद्र की सुंदरता मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि ये फिल्म वॉज अडेप्टेड फ्रॉम एन अमेरिकन फिल्म 1961 की पॉकेट फुल ऑफ मिरेकल्स, जो अगेन 1933 की एक फिल्म लेडी फॉर अ डे का रीमेक थी। इसी सब्जेक्ट पे 1989 में एक हांगकांग में फिल्म बनी थी मिरेकल्स नाम से, और इसी सब्जेक्ट पे 2008 में बॉलीवुड में एक फिल्म बनी थी सिंग इज किंग। तो सोचिए फिल्मों का इतिहास मतलब कहां से कहां जाता है भाई। खैर हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं। लोफर फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनते हैं, रिटन बाय आनंद बख्शी साहब, कंपोज्ड बाय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड संग बाय मोहम्मद रफी साहब। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Rambala!
0: ¡Murga, murga! ¡La vieja la murga!
1: ¡Mirchi, murga!
2: Hello.
3: Hello, Mr. Gotham.
2: Good
3: morning. Sir, may I actually ask sir, about the request kar raha hai main sir, aap suna aap wo singing winging sikhate hai sir, to sir gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na wo sir thode different hote hain.
2: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi.
3: Pehle mohalle mein mere snake nikla tha. To snake kahin ghus gaya tha to mere ko pehle wale bolte hain ki bhai aaja tu aaja snake nikal de sir, main aapko main peshkash kar raha hu sir, har tarah ke gaane gha leta hu lekin meri speciality hai snake mein. Aur nagin kya hai sir, nagina फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाई?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सुन ले बात,
3: मेरी बात
2: सुन, पहले बात सुन।
3: हाँ सर,
2: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर।
3: सर बोलिए,
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: आपको पता है विनोद खन्ना साहब को कुछ प्रिंट मीडिया में सेक्सी सन्यासी भी कहा जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, क्योंकि फिल्मों में एनीवे उनको बहुत हॉट बहुत गुड लुकिंग माना जाता था, जो कि वो थे। और अचानक से एट द पीक ऑफ हिज करियर 1978 में उन्होंने फिल्मों से अपना ब्रेक अनाउंस कर दिया और 1982 में वो स्पिरिचुअल गुरु ओशो के फॉलोअर बनके अमेरिका में उनके आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने बहुत अलग अलग तरह का काम किया, माली का काम किया, रसोईये का काम किया। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप एकदम बैठे रहो बस और ध्यान ही करते रहो 24 घंटे, ये तो कहा नहीं, तो काम भी देते थे करने के लिए, तो उसमें बहुत मजा आता था। और वो काम जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किए, एक माली का काम, यू नो, एक रसोईये का काम, रसोई का तो खैर मैं कुकिंग वुकिंग में बहुत इंटरेस्ट लेता था पहले भी। फिर मैं इलेक्ट्रिशियन बना, प्लम्बर बना, मैंने हैवी मशीनरी चलाई, मैंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ें मैंने की, तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस हुए, कंस्ट्रक्शन वर्क किया मैंने, तो ये चीज़ें मैं कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाता अगर मैं उनके साथ मिलता।
0: सही है भाई, जीवन में हर तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, भौतिकता, अध्यात्म, लड़ाई, झगड़ा, प्यार। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
5: Purani Jeans with Charu. Only on

0: one of the finest actresses of Indian cinema, Nutan Ji. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ. उनका फिल्मों में आना शौक था या इत्तेफाक था? एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था.
1: ना इत्तेफाक था ना शौक था, मुझे लगता है एक क्योंकि मेरे माता पिता दोनों ही फिल्मों में थे. मेरे डायरेक्टर थे मेरे पिताजी और मेरी माता जी उस जमाने की फिल्म स्टार थी, तो एक नेचुरल चीज. मेरी पहली फिल्म थी हमारी बेटी और उसकी शूटिंग शुरू हुई थी लेट 1949 अर्ली 50 में.
0: अच्छा, इस टाइम ना नूतन जी अपने लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस थी क्योंकि वो बहुत स्लिम थी और आग में घी डालने का काम करते थे रिश्तेदार कि हाय कितनी पतली लड़की है, इसको कुछ खिलाओ पिलाओ. लेकिन इनकी जो शुरुआती फिल्में आई ना उनमें इनके काम की बहुत तारीफ हुई. फिर वही रिश्तेदारों के स्टेटमेंट्स बदल गए कि क्या टैलेंटेड लड़की है हमारी, पतली है तो क्या हुआ. अच्छा, इसी दौरान ना नूतन जी को स्विट्जरलैंड भेजा गया एक फिनिशिंग स्कूल में, जहाँ से वो और भी ग्रूम्ड कॉन्फिडेंट होकर लौटी. मैं भी वापस आती हूँ थोड़ी देर के बाद, राइट हियर पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.
2: सावन का महीना पवन करे सोर,

0: रे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: नूतन जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस थी उनको म्यूजिक का भी उतना ही शौक था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट उन्होंने अपनी एक फिल्म छबीली में खुद का गाना प्लेबैक भी किया था, लेकिन फिर ये आगे कंटिन्यू नहीं किया। सुनिए इस बारे में एक बहुत पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने बचपन से, जब मैं 2.5-3 साल की थी, तब से मैंने क्लासिकल गाना सीखा। 14-15 साल मैंने गाना सीखा पंडित जगन्नाथ प्रसाद से, और वो तो मेरा रियाज जारी रहा, लेकिन मैंने उसको इतना फिल्मों में मैंने कंटिन्यू नहीं किया। फिल्म बनाने में एक संगीत की दुनिया और होती है और अदाकारी की दुनिया और होती है, और चूंकि मैं ऑलरेडी एक कामयाब अभिनेत्री रही थी उस वक्त भी, क्योंकि छबीली जब बनी थी उस वक्त मेरी सुजाता भी बन चुकी थी, मेरे 2 ऑलरेडी अवार्ड्स दे थे मुझे, तो उसके बाद मैं ये इंसिस्ट नहीं करना चाहती थी कि भाई मैं खुद ही अपने गाने गाऊंगी, क्योंकि उसमें एक डर था कि अगर मैं ये इंसिस्ट करती तो शायद मैं अच्छे अच्छे रोल्स गंवा देती।
0: ये भी ठीक है। वैसे अगर आप पेइंग गेस्ट मूवी देखे ना, तो उसमें एक सीन है जहाँ पर एक डिबेट पोयम कंपटीशन टाइप का है, तो वहाँ पे जो भी गाया है ना नूतन जी ने, वो उनकी खुद की आवाज है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: बताओ हमको
1: डूब मरो
0: डूबेगा नहीं तरेगा छप छप छप छप छप छप छप छप डूबेगा नहीं तरेगा प्यार से हम नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना अजी हम तो मोहब्बत करेगा।
2: कभी कभी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 80s से पहले नूतन जी और दिलीप कुमार साहब की कोई फिल्म साथ में नहीं आई। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्यों नहीं आई इस बारे में एक इंटरव्यू में सुनिए नूतन जी ने क्या शेयर किया था।
3: आई तो नहीं, लेकिन हमने एक फिल्म इकट्ठे बनाई थी जो अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से रिलीज नहीं हो पाई। उस फिल्म का नाम था शिकवा, बहुत पहले बनी थी 1951-52 में।
2: इसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि उनके फेवरेट को स्टार्स कौन थे।
3: एक तो बलराज जी थे और दूसरे अशोक कुमार जी और राज कपूर जी। राज कपूर जी क्योंकि वो खुद डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, तो उनको एक फिल्म मेकिंग का बहुत ही नॉलेज है और एज एन आर्टिस्ट वो दूसरे आर्टिस्ट की कदर बहुत करते हैं, तो उनके साथ भी बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और एज एन आर्टिस्ट भी और एज ए हीरो भी मुझे अमिताभ जी बहुत पसंद है।
2: वैसे बच्चन साहब के साथ उनकी एक जो फिल्म आई थी उसे ना हमारे घर में गुड़ वाली फिल्म बोला जाता है। उस फिल्म में गुड़ बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सौदागर फिल्म। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Mirci.
1: Iscaba la puscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: बदतमीजी
3: नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ू
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

0: एक पुराने इंटरव्यू में ना नूतन जी से थोड़ा ट्रिकी थोड़ा बोल्ड सा क्वेश्चन पूछा गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़ा सटली पूछा गया था कि अक्सर फिल्मों में रोमांटिक सीन करते हुए रील वाली फीलिंग का रियल वाली फीलिंग में बदलने का खतरा रहता है। इस पर सुनिए नूतन जी ने क्या कहा था।
1: क्या है कि हम जब काम करते हैं तो एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ चीज हो जाती है। उस वक्त के लिए हम डायलॉग याद करते हैं और उस वक्त के लिए वो हम एक्टिंग करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे पर्सनल रिश्ते नाते हैं वो बिल्कुल वैसे के वैसे रह जाते जो हमेशा थे पहले की तरह।
0: वेरी स्मार्ट आंसर। और किन किन एक्टर्स के साथ उनकी जोड़ी पॉपुलर रही इसके बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: देव साहब, देवानंद जी, मेरी पिक्चरें बहुत सी बनी थी, लगातार बनती गई। जब हमारी जोड़ी क्लिक हो गई तो बहुत से प्रोड्यूसरों ने और देव साहब ने खुद भी अपने पिक्चर में हम दोनों को ही लिया था। तेरे घर के सामने, पेइंग गेस्ट, बहुत सी और पिक्चरें थी, मंजिल, उसके बाद राजी के साथ, राज कपूर जी के साथ अनाड़ी बनी, छलिया बनी, और उसके बाद बनी सुनील दत्त जी के साथ। तो एक जमाना आ जाता है जैसे एक पैर क्लिक कर जाता है।
0: सही है, इसी बात पे ब्रेक ले लेते हैं। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
2: In association with World Vegan Vision.
4: Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
5: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
4: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
6: Ise apni jeb mein rakh le, Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
4: Moral of the story, number one, sirf ek hi hota hai. Ek hi hota hai. जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: नूतन जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस एवर। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नूतन जी जिस तरह से इमोट करती थी ना, यू जस्ट कांट टेक आईज ऑफ हर फेस। और एक बार एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि कोई भी कैरेक्टर प्ले करने से पहले क्या उनके मन में चलता है, कैसे वो तैयारी करती हैं।
1: देखिए, जब मैं भूमिका करती हूँ तो मैं अपने आप को बिल्कुल भूल जाती हूँ। जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल उसमें खो जाती हूँ। और मैं ये यानी यकीन करना चाहती हूँ कि वो लड़की जो मैं कर रही हूँ वो मैं खुद हूँ। जो भी उसके साथ अच्छा बुरा हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है, उस कैरेक्टर के साथ हो रहा है। और उसके मुताबिक मेरा ख्याल है वो जो एक्टिंग होती है वो अपने आप खुद ब खुद आ जाती है।
0: और उनकी सभी आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस में से उनकी फेवरेट कौन सी रही?
1: देखिए, मुझे वो रोल करने में बहुत ही अच्छा लगा, वो था रोल बंदिनी का। क्योंकि वो रोल बहुत मेरे हिसाब से उसमें वेरिएशंस बहुत थी, कुछ हद तक डिफिकल्ट भी था। और अलग अलग उसमें सारे यानी के अलग अलग उसमें ढंग थे, अलग अलग उसमें एक्सप्रेशंस थे, अलग अलग फीलिंग्स थी।
0: वैसे ये फिल्म देख के ना मैं थोड़ी सी डिसहार्टन हो गई थी। इतने हैंडसम धर्मेंद्र के प्रपोजल को नूतन जी ने ठुकरा दिया था। तब समझ नहीं थी ना कि क्या मीनिंग था उस फिल्म का। खैर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: करो।
1: भाई नूतन जी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में उनके प्रोफेशन की वजह से उनको दिक्कत नहीं आती।
2: आती तो है, लेकिन उसमें मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे का भी बहुत साथ है, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अंडरस्टैंडिंग है। वो जानते हैं कि भाई ये बहुत बिजी हैं, तो वो ज्यादा डिमांड नहीं करते।
1: और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी एक वजह थी कि नूतन जी कभी थोक के भाव ऐसी फिल्में नहीं करती थी, गिनी चुनी फिल्में करती थी।
2: मैंने कभी भी पूरे मेरे करियर में 5 या 6 से ज्यादा पिक्चर इकट्ठे कभी नहीं ली। मुझे अपने हॉलीडेज भी मिल जाते हैं और अपने परिवार के साथ भी।
1: और फिल्मों में काम करने के अलावा और क्या करना उनको अच्छा लगता था?
2: इन कामों की वजह से मुझे वैसे दूसरा कोई काम करने को वक्त ही नहीं मिलता, टू टेल यू द ट्रूथ। वैसे घर बार है, सब लोग परिवार हैं, सब बहुत खुश हैं, तो उसमें ही काफी, यानी कि मैंने कहा जैसे मैं हॉलीडेज लेती हूँ तो अपने परिवार के साथ काफी दिन गुजार सकती हूँ।
1: वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है लाइफ में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La
1: viva la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: Hello, usko wahan se mat uthao, yaar. Hello.
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: तो मैं आपको बता दूँ। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है, इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठा
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना, उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
1: सामान
2: उठवा।
1: क्या कर रहा
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा, ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, also अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। It's hot.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La
1: vieva la burga. Milci, burga. Hello,
2: Mr. Gotham.
1: कौन बोल रहे हैं
2: सर? मैं एक्चुअली आसर है, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं सर, आप सुना है आपसे वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाते हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: सर कुछ गाके सुनाएगा?
2: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
2: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने हैं
2: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। मैं एक पेशकश कर रहा हूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात,
2: मेरी बात
1: सुन, पहले बात सुन।
2: हाँ सर,
1: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: सर, बोलिए।
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
2: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Sweet के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, Patrick.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
2: अब मिर्ची खा.
4: Radio Mirchi. It's hot.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
3: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: बच्चों को चीजों की वैल्यू करना कैसे सिखाएं? आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक छोटी सी बात मुझे याद आई तो मैं शेयर कर रहा हूँ, बताइए सही है गलत। तो जब मेरे दो बच्चे हैं, जब वो बड़े हो रहे थे ना, तो पहली बच्ची मुझे याद है, तो खाने में बहुत समय लगाती थी वो, और कई बार वेस्ट कर देती थी, और वो कहती थी अभी मन नहीं हो रहा। तो मैं खाने के लिए और खिलौने के लिए मैं कहता था, कपड़ों के लिए भी, कि भाई जो तुम्हें नहीं पसंद है चलो कोई बात नहीं, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा खाना कोई बात नहीं, चलो एक काम करते हैं बाहर जाते हैं, किसी जिसको जरूरत है जरूरतमंदों को हम दे आते हैं, ताकि उसमें ये वैल्यू डेवलप होने लगे कि वेस्टेज नहीं कर सकते, और दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है तो उनको हम दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे उसके दिमाग में बैठने लगा कि ये जरूरी है, हम वेस्ट नहीं कर सकते। बट धीरे धीरे क्या हुआ, कभी समय नहीं होता, कभी रात ज्यादा हो गई, तो वो जो छोटा सा हमने एक एक्सरसाइज शुरू किया था वो लुप्त होने लगा। तो मैं देखता हूँ कि मेरी छोटी बेटी के लिए साथ में वो कर नहीं पाया, और मुझे कभी कभी लगता है कि बड़ी और छोटी में यही फर्क है कि बड़ी वाली को ये समझ में आ गया लेकिन छोटी वाली को ये समझ में नहीं आया। तो कभी कभी मुझे लगता है यार मैं ये पूरा नहीं कर पाया, और फिर मैं अपने आप को कहता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर ये संस्कार घर में है कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाएगा। ऐसे केस में दो सवाल है, क्या ये सही तरीका है उनको ये समझाने का कि ये आपका नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, तो इनको वैल्यू करना सीखो, और दूसरा अगर आप ये कैरी ऑन नहीं कर पाते तो उस सिचुएशन में क्या करें?
4: 100% ये बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि व्हेन यू डू एन एक्टिविटी, एक बच्चे के साथ आप समय बिताते हैं, आप उसको लेकर के गए, आपने उसको दिखाया, जब भी हम पेरेंटिंग में थोड़ा समय देते हैं तो वो बच्चा सिर्फ आपको सुन नहीं रहा है, वो एक इमोशनल राइड से गुजर रहा है।
3: बिल्कुल,
4: वो इमोशंस भूलती नहीं है, सुना हुआ भूल सकता है, पर जो आपने एक बार फील कर लिया, महसूस कर लिया, वो नहीं भूलता,
3: वो जिंदगी भर रहता है,
4: वो जिंदगी भर रहता है। कहीं पर भी आप किसी एक स्पिरिचुअल क्लास में भी गए, आपको कई बार सुना हुआ याद नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत अच्छा था, लेकिन वो जो एक वाइब्रेशन है वो आपको याद रहता है। तो जब आपने वो एक्टिविटी उनके साथ करी, आप लेकर के गए, आपने दिखाया कि कहीं ऐसे भी हैं जिनको मिलता नहीं है, फिर आपने उनको हेल्प करना सिखाया, उनको रियलाइज कराया कि फूड वेस्ट नहीं करना, इट इज दिस होल एक्ट हैज क्रिएटेड समथिंग विद इन हर, तो वो चीज उसको बिल्कुल भी भूल नहीं सकती है। सेम चीज आप नहीं कर पाए अपनी छोटी डॉटर के साथ, अब जो हो गया हो गया,
3: बिल्कुल
4: उसको तो हम बैठ करके गिल्ट में भी जाना और डिसहार्टन होने से कोई फायदा नहीं है, बट आई थिंक वी कैन डू इट नाउ।
3: अच्छा,
4: इनफैक्ट अभी दोनों चीजें काम करेंगी, बिकॉज नाउ द इंटेलेक्ट हैज डेवलप्ड, तो वो समझ में भी आएगा।
3: अच्छा,
4: और वो फील भी होगा, उस एज पर केवल फील हो रहा है, इस एज पर आपको समझ में भी आ रहा है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अच्छे काम करने का कोई समय नहीं होता, आप उसे कभी भी कर सकते हैं। आइए इस बारे में समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ऐसा कभी नहीं होता कि लेट हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो बड़े हो गए, अब समय उनके पास भी कम है, वो भी विलीन हो गए अपनी अपनी चीजों में।
4: लेट, ऐसे अगर हम लेट शब्द यूज करें ना, तो फिर तो हमें हर चीज के लिए लेट लगेगा। देन दे से ना, इट्स नेवर टू लेट। इफ यू रियली वांट टू लर्न, इफ यू रियली वांट टू चेंज, सो व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर।
3: बिल्कुल,
4: यू कैन स्टार्ट एट एनी मोमेंट। आप लेट बोलेंगे तो फिर वो, देखो एज तो बेस्ट होती ही है छोटेपन से, क्योंकि जैसे आपको कहा कि वो एक स्पॉन्ज जैसा होता है, तो गर्भ से लेकर के ऑलमोस्ट 6-7-8 ईयर्स तक इट्स अ वेरी गुड एज टू टीच योर चाइल्ड एनीथिंग।
3: बिल्कुल,
4: उसमें वो जल्दी अब्सॉर्ब करता है, जल्दी एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर वो समय निकल गया तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम चीजें सीख नहीं सकते। इनफैक्ट मैंने कई बार ये भी देखा है कि उस समय तो आपने अब्सॉर्ब कर लिया, अब आप विलिंगली करते हैं।
3: हाँ, क्योंकि वो आदत बन जाती है।
4: अगर आपने रियलाइज कर लिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आज चूज करती हूँ कि मुझे खाना वेस्ट नहीं करना, नाउ इट इज माई डिसीजन।
3: बिल्कुल,
4: मैंने समझ लिया। आप, हम लोग कितने बच्चे देखते हैं जिनको स्कूल में सिखाया जाता है, बाद में छोटी सी चीज है, उनको टीचर कहती है से नो टू क्रैकर्स।
3: बिल्कुल,
4: और वो बताती है इससे क्या नुकसान होता है, फैक्ट्री में गरीब बच्चे हैं,
3: बैठ जाता है दिमाग में,
4: सब बैठ जाता है। अब वो घर आकर के पेरेंट कहता है थोड़े से चला लेते हैं,
3: नहीं चलाएंगे,
4: वो नहीं चलाते,
3: क्योंकि समझ में आ गया उनके,
4: उनको समझ में आ गया। अब वो विलिंगली चूज कर रहे हैं कि हमें नहीं, बड़े कह रहे हैं भले कर लो, छोटे कहते हैं नहीं नहीं,
3: बिल्कुल सही कह रहे हैं,
4: हमने समझा है, हम नहीं करेंगे। सो इट इज नेवर टू लेट, नाउ दे हैव रियलाइज्ड,
3: बिल्कुल,
4: एंड दे हैव टेकन अ डिसीजन विलिंगली, तो अब पूरी लाइफ के लिए होगा वो चीज।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हम अपने आप को सही समझते हैं जिसके कारण हमारे अंदर ईगो आता है, आइए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जब मैं बहुत छोटा था, छोटा तो क्या, मैं शायद अडल्ट के दौर में भी होता था, मेरी माँ और मेरा जो रिश्ता था ना, वो बड़ा प्यारा रिश्ता था, अजीब भी था। हम दोनों में ना बहुत प्यार था, आज भी है, हमेशा रहेगा, लेकिन हम में बहुत अहंकार भी था। तो हमें जब भी लड़ाई होती थी, किसी बात की लड़ाई होती थी, अनबन हो गई, बातचीत हो गई, तो हम एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे, हम बात करना बंद कर देते थे। और हमेशा ये रहता था कि उनकी गलती है, वो आके बोले, वो बात करें, मैं क्यों बात करूं। और उनकी तरफ से भी ये रहता था कि भाई मैं तो इसकी माँ हूँ, विशाला के बात करें, मैं क्यों करूं। और ये सिलसिला 3-4-5 दिन चलता था, मतलब पापा के थ्रू बात कर रहे हैं, बहन के थ्रू बात कर रहे हैं, ये सिलसिला है, उसको जाके बोल दो, उनको तुम बोल दो, ये चलता रहता था। अब मुझे समझ में आता है कि ये व्यर्थ था, क्योंकि अब तो वो चली गई, अब मैं किससे झगड़ा करूं। और दूसरी बात ये है, अब मुझे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये अहंकार ही था। लेकिन जो मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि वो, हम परेशान बहुत होते थे, शायद वो भी उतनी परेशान होती थी, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन वो हम निकाल नहीं पाते थे। आई कुड नॉट समन द करेज टू गो एंड से सॉरी टू हर, और शायद 4 दिन बाद जाके मैं बोल दूं, लेकिन बचपन में वो सीख कहां से आई मुझे पता नहीं। और मुझे याद है मम्मी हमेशा कहती थी कि जब मैं नाराज हूं उस समय आके मुझे बात मत किया करो, तुम 2 घंटे बाद आके मुझे बोल दो, मैं सुन लूंगी तुम्हारी बातें, लेकिन जब मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ उस समय मुझसे बात मत किया करो। और वो मुझ में भी बैठ गया, लेकिन ये साइलेंट ट्रीटमेंट वाला किस्सा ये पूरी जिंदगी चला उनके साथ। तो ये जो ईगो मुझ में आया, ये अहंकार आया, स्वाभिमान मैं समझता था इसको, ये कैसे आया? और मैं जानता हूँ ये कई घरों में होता है,
4: सब घरों में होता है कई बार,
3: तो इसको कैसे तोड़ा जाए?
4: साइलेंट ट्रीटमेंट भले नहीं होता होगा, लेकिन देखो ये ईगो का जो रूप है, ईगो के जैसे हमने कहा बहुत रूप होते हैं, उसमें से एक ईगो का जो रूप है जिसको हम कहेंगे आई एम राइट। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंट हैं, और जो मैंने अक्वायर किया, जो मैंने सीखा, जो मेरे संस्कार है, मुझे लगता है कि मैं राइट हूँ,
3: बिल्कुल,
4: जो सही भी है। बस हम इतना भूल जाते हैं कि मैं राइट हूँ अपने पर्सपेक्टिव से।
3: हाँ, सामने वाले का पर्सपेक्टिव भी सही हो सकता है,
4: है होता ही है ना, हो सकता है नहीं, होता ही है। इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप ये बॉटल देखे, हमारे पास ये बॉटल है, आप अगर यहाँ से देखे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा कलर दिखाई,
3: ट्रांसपेरेंट सफेद कह सकते हैं आप,
4: ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, और अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे ग्रीन दिखाई दे रहा है। अब हम कब तक आर्ग्यू कर सकते हैं इस पर?
3: जिंदगी भर कर सकते हैं,
4: जिंदगी भर कर सकते हैं। अब हम में से राइट कौन है?
3: दोनों सही है, क्योंकि इसका कैप जो है, जो आपकी तरफ है वो हरे रंग का है, और जो बॉटम है वो मेरी तरफ है जो ट्रांसपेरेंट है।
4: लेकिन अगर आपको ग्रीन देखना है और मुझे अगर ट्रांसपेरेंट देखना है, तो क्या करना पड़ेगा?
3: बोतल को उल्टा करना पड़ेगा ताकि मैं हरा देखूं और आप।
4: ये हम चाहते हैं, पर ये हो नहीं सकता, क्योंकि ये फिक्स्ड है। हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम बॉटल को चेंज करना चाहते हैं, हम सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, सिचुएशन फिक्स्ड है। आप जिस चीज के ऊपर आर्ग्यू कर रहे होंगे, कोई भी बात होगी, बात नहीं बदल सकती।
3: बहुत बढ़िया।
4: अब मुझे अगर वापस इसको ट्रांसपेरेंट देखना है और आपको ग्रीन देखना है, तो क्या करना पड़ेगा? दिस कैन नॉट चेंज, ये नहीं बदल सकता।
3: तो हमें अपना नजरिया और अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी।
4: एब्सोल्युटली,
3: बिल्कुल सही कह रहे
4: हैं। वो नहीं हम करना चाहते। मुझे ये चीज आपके परसेप्शन से देखनी पड़ेगी, और आपको ये चीज मेरे परसेप्शन से देखनी पड़ेगी। और कभी कभी तो ऐसा होगा कि हम देख भी नहीं पाएंगे, हमें सिर्फ एक दूसरे को ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, शायद आपके नजरिए से ये ट्रांसपेरेंट है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हम सब अलग अलग यूनिक पर्सनालिटी हैं, इसलिए हमारा चीजों को देखने का नजरिया भी अलग होता है. कैसे समझते हैं?
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: हम सारे डिसीजंस जो लेते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से लेते हैं, और जो इंटेंशन होता है वो दूसरे को हेल्प करने का होता है. तो हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं, ये गलत है, तो तुम मत करो, और इंटेंशन तो सही है. और सामने वाला कहता है, मैंने देखा है ये सही है, मेरे बाकी दोस्त कर रहे हैं, मैंने भी देखा है, मैंने भी जिंदगी देखी है, दुनिया देखी है, तो आप बीच में मत पड़िए. और वहीं से शुरुआत होती है टकरार की. तो ऐसे केस में क्या करें? आप जो कह रही हैं बहुत सुंदर बात आपने की, सिचुएशन तो नहीं चेंज होगी, अपना नजरिया बदलो, लेकिन नजरिया जो आ रहा है वो तो एक्सपीरियंस से ही आ रहा है.
4: इसलिए उस समय जो मन हमारा कहता है, ईगो क्या कहता है, मैं सही हूँ, आप गलत है. ईगो की लैंग्वेज ये है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, मदर सन के बीच में है, किसी के बीच में भी हो सकता है. पर ईगो की भाषा क्या है, मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग है. सामने वाला कह रहा है मैं राइट हूँ, आप रॉन्ग है. अब जब हम ईगो को मना ईगो से बाहर निकलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट इसको हम कहेंगे, तो वहां पर हमें ये रियलाइज होता है कि सही गलत की बातें नहीं है, हम अलग अलग हैं.
3: हाँ.
4: सही गलत नहीं है, हम अलग अलग हैं. और क्योंकि हम अलग अलग हैं, इसलिए एक ही चीज हमें अलग दिखाई दे रही है. विच मीन्स आई मे नॉट अग्री विद यू, बट कैन आई एक्सेप्ट यू.
3: बहुत जरूरी है.
4: मैं जरूरी नहीं आपके साथ अग्री करूं, क्योंकि वो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस है, तो उससे जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल राइट है, और मुझे मेरा राइट ठीक लग रहा है. तो हम वो कर सकते हैं जो हमें ठीक लग रहा है, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं कर सकती हूँ, जो आपको ठीक लग रहा है आप कर सकते हैं. साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों आया? क्योंकि एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट भी खत्म हो गई.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हमारे अंदर ईगो आ जाता है तब अंदर प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो जाती है, कैसे जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ऐसा हर बार होता है क्योंकि मुझे पता था कि प्यार तो बहुत है मम्मी को मुझसे, मुझे भी बहुत प्यार है, एक्सेप्टेंस भी है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं हम, लेकिन कुछ कुछ मुद्दों पे हम बहुत अड़ जाते थे। तो मुझे कभी कभी, अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे लगता है कि कहीं कंट्रोल था, कहीं वैलिडेशन की बात हो रही थी। तो मुझे लगता है ईगो, जैसे आपने कहा फियर, सैडनेस और एंगर, ये तीन चीजों पे होता है। तो मुझे लगा कि शायद वैलिडेशन, कंट्रोल, कंपैरिजन, इन चीजों से ईगो ज्यादा बढ़ता है।
4: क्या होता है, देखो प्यार तो हमें है ही, लेकिन प्यार वाइब्रेशन है। जिस समय पर एक्सेप्टेंस है उस समय पर प्यार है, लेकिन जिस समय आपके मन में उनके प्रति गुस्सा है या थोड़ी देर के लिए भी इरिटेशन है, थोड़ी देर के लिए भी नफरत है, वो प्यार की एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है। प्यार एक वाइब्रेशन है और कुछ नहीं है, एक बहुत प्योर पॉजिटिव एनर्जी है जो एक से दूसरे तक रेडिएट होती है, मदर से चाइल्ड तक, चाइल्ड से मदर तक वो रेडिएट हो रहा है वाइब्रेशन। पर जिस मोमेंट ईगो आ गया और आप एक्सेप्टेंस की जगह रिजेक्ट ही कर रहे हैं ना, नहीं आप गलत हैं, आप गलत हैं, मुझे आपसे बात नहीं करनी, चाहे वो एक दिन है, चार महीने, उतना समय कोई प्यार नहीं है। वहाँ एक समय पर एक ही वाइब्रेशन और एनर्जी रहती है, है, लेकिन उतने दिन के लिए नहीं है। उतने दिन आप भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, वो भी रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आप भी दर्द में हैं, वो भी दर्द में। साइलेंट ट्रीटमेंट कभी नहीं होना चाहिए, वो हमारे रिश्ते को बहुत डैमेज करता है। क्यों? जब हम बोल रहे हैं ना तो फिर एनर्जी निकल जाती है।
3: बिल्कुल,
4: जब हम साइलेंट हो जाते हैं ना, हम बोल नहीं रहे,
3: लेकिन वो अंदर हमें और नेगेटिव स्पाइरल में डाल
4: चलता है।
3: हाँ, वो दिमाग खराब होता है कि वो क्या है, वो समझ क्यों नहीं रही है, उनको समझ नहीं आता, वो हमेशा अपनी चलाती हैं, हमेशा ये दिमाग में चलता रहता था।
4: वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचता है, वो जो रिश्ता है उसमें दूरी ले आता है टू एन एक्सटेंड। आपके पेरेंट्स होंगे, आपके बच्चे होंगे, तो भी घृणा और नफरत हो सकती है, होती भी है ना। कितने रिश्ते हम देखते हैं, वो बच्चा भी कह देता है हिट माई फादर, आई हिट माई मदर। क्यों? बहुत ज्यादा उस रिश्ते में कंट्रोल था, एक्सेप्टेंस नहीं थी, कंट्रोल था, एंगर था। इंस्पायर करना अलग होता है, मुझे लगता है ये राइट है, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, पर कंट्रोल अलग होता है, ये ही राइट है, ये ही आपको करना है, आप ऐसा करेंगे तो ही एक्सेप्टेड और लव्ड है। कंडीशनल वो नहीं हो सकता, दो जने बिल्कुल अलग हैं, उनके पर्सपेक्टिव, उनके एक्सपीरियंस, उनके जीवन जीने का तरीका अलग ही होने वाला है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने अंदर से ईगो कैसे निकालें? आइए इस पर बात करें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: अब ये जो है आपको समझ में तब आता है जब आपके साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो। जैसे कई बार मुझे लगता है आफ्टर माय मम पास्ट अवे मुझे बहुत सीखने का मौका मिला, मैं बहुत चीजें समझने लगा, और अब मुझे लगता है कि लड़के को फायदा नहीं है क्योंकि जब इंसान ही नहीं रहता तो मैं किससे लड़ूं, तो किससे नाराज हूं मैं, किससे मुंह फुला के बैठूं मैं, क्या ही ईगो धरा है। लेकिन ऐसा नहीं कि ईगो खत्म हो गया, ईगो कहीं ना कहीं आ जाता है, अहंकार हमेशा छिपा रहता है कहीं। तो कई बार है जब मैं लोगों को कहता हूँ कि कोई फायदा नहीं लड़के यार, बात सुलझा लो, लेकिन कई ऐसे सिचुएशन भी आते हैं जहाँ पे मैं फिर वही ट्रीटमेंट करने लगता हूँ औरों के साथ। मुझे लगता है मैं सही हूँ, ये समझ नहीं रही है, ये समझ नहीं रहा है, इसको समझ मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, पता नहीं क्यों इसको समझ में नहीं आता। तो शायद मैं साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे ही नहीं पसंद, बाद में मुझे समझ में आता है। तो ऐसे केस में क्या करें, हाउ डू यू टेक आउट ईगो, बहुत मुश्किल चीज है।
4: इट इज वेरी स्कैरी क्योंकि कई चीजें जो हमें जीवन भर अच्छी नहीं लग रही होती
3: हम वही दूसरों के साथ कर रहे होते,
4: हाँ वो वैसा बनने लग जाते हैं, और हम कई बार अपने से पूछते हैं ये कब हो गया।
3: बिल्कुल समझ में नहीं आता,
4: बिकॉज दिस वॉज समथिंग दैट आई डिड नॉट लाइक। मैंने कोई गुस्सा करता था मुझे अच्छा नहीं लगा, आज मैं अपनी टीम पर गुस्सा क्यों कर रहा हूँ।
3: बिल्कुल,
4: नाउ अगेन हम माइंडफुली जीवन नहीं जी रहे, हम माइंडफुल होकर के नहीं कर रहे हैं। जैसे आपने कहा रियलाइज भी हो जाता है, इसीलिए थोड़ा समय सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि हम में से मेजोरिटी को ना गलती करते ही पता चलता है हमने गलत किया।
3: बिल्कुल इमीडिएटली
4: पता चलता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कह भी दिया, आपने कहा मैं साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देता, पर अभी भी वो चीजें हो जाती हैं, तो इतना ही हो सकता है कि अब हो गया ना, अब वो चीज तो रिवर्स नहीं कर सकते, पर अब जो हम पहले 4 दिन का साइलेंट ट्रीटमेंट रखते थे अब हम इमीडिएट बात करना शुरू कर सकते हैं।
3: बिल्कुल,
4: ईगो हमेशा, जो आपने पहले एक बहुत सुंदर बात कही थी कि आप अपोलोजाइज नहीं कर पाते, वो जाने नहीं देता, ये भी एक ईगो का रूप है।
3: बिल्कुल,
4: ईगो क्या कहता है,
3: मैं क्यों करूं
4: हाँ। मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों बेंड हूं, उसको बात करनी है तो वो करे, अपने से बात करे, अपने को समझाए। फॉर एग्जांपल आप फादर हैं और डॉटर है, अब वो डॉटर समझो नहीं बात कर रही है, आप फादर हैं, आप अपने को समझाएं, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
4: दो चीजें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एक अगर हम बात नहीं कर रहे पीस ऑफ माइंड नहीं होता।
3: हाँ बिल्कुल, दिमाग में चलता ही रहता है।
4: आप बाहर बात नहीं कर रहे पर आप मन में तो
3: बिल्कुल
4: उन्हीं से ही बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं, किसी और चीज में ध्यान नहीं लग रहा। तो एक तो आप जैसे उन्होंने आपके मन को ओवर पावर कर लिया, पीस ऑफ माइंड नहीं है, नॉट फीलिंग कम्फर्टेबल, सो फॉर योर पीस ऑफ माइंड एंड बिकॉज यू वैल्यू दैट रिलेशनशिप, आपके लिए वो रिश्ता बहुत जरूरी है, इसलिए आप चूज करते हैं, अपनी ईगो को बोलते हैं आई विल टेक दैट फर्स्ट स्टेप, आई विल टेक दैट फर्स्ट स्टेप। सॉरी बोलना है तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। अब ये बात अलग होती है, एक बार हम सॉरी बोलते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारी गलती है, कभी कभी हम सॉरी इसलिए बोल रहे होते हैं कि हम बहुत ज्यादा किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, हमारा जो मन की इमोशनल स्टेट है वो डिपेंडेंट होती है।
3: बिल्कुल,
4: हमें लगता है वो ठीक हो जाए
3: इसलिए हम सॉरी बोल रहे हैं,
4: तो मैं ठीक हो जाऊंगा, आई विल फील कंफर्टेबल, वो भी ठीक नहीं है। आई डोंट नो इफ यू कैन मेक आउट अ डिफरेंस।
3: नहीं, बहुत अच्छी बात बोली और ये होता भी है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: नो
6: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
5: बॉम्बे एक्सप्रेस एंड वैष्णो केटरर्स, अमेरिका में सबसे बेहतरीन इंडोर और आउटडोर केटरिंग सेवा। सगाई, शादी, बेबी शावर, जन्मदिन पार्टियां और एडल्ट डे केयर, आपके स्थान पर लाइव कुकिंग की सुविधा। हम अमेरिका में ताज़ा फरसान और मिठाइयां बनाते हैं। हम न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क में सोमवार से शनिवार तक डिलीवरी के साथ टिफिन सेवा भी प्रदान करते हैं। आज ही बॉम्बे एक्सप्रेस और वैष्णो केटरर्स को कॉल करें 732-986-6241 और विजिट 2849 वुडब्रिज एवेन्यू, एडिसन, न्यू जर्सी।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: हमें इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी ऐसा कहते हैं कि यार सामने वाला ठीक हो जाए इसलिए हम सॉरी बोल देते हैं। गलती शायद आपकी हो भी नहीं, लेकिन आप बोलते हैं यार वो तो नहीं सॉरी बोलेगा, मैं जानता हूँ उसको, मैं ही सॉरी बोल के खत्म करता हूँ ताकि बातचीत तो शुरू हो। तो ये आप कह रहे सही नहीं है।
4: नहीं, वो सही है क्योंकि आपकी स्थिति तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है ना। वो तो ठीक है, उसमें कोई हर्जा नहीं, आप बिल्कुल ठीक है। एंड नाउ आप जाकर के सॉरी सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो आत्मा कमजोर है। आपको लगता है अगर आप थोड़ा सा बेंड हो गए उसके मन का वेस्ट फुल स्टॉप लग जाएगा एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। चाहे वो घर में कोई रिश्ता है, चाहे वो टीम में कोई बात है, और फिर जब वो ठीक हो जाएगा तो जो भी आपको बात उनको कहनी है या समझानी है आप समझा सकते हैं, दैट इज ओके। यहाँ आप बिल्कुल ठीक है, आपके मन की स्थिति उन पर डिपेंडेंट नहीं है। आई एम टॉकिंग जब आप बहुत दर्द में है,
3: हाँ।
4: आप इमोशनली उन पर डिपेंडेंट है।
3: अच्छा, हाँ, अच्छा समझ गया मैं।
4: कई बार ऐसे रिश्ते भी होते हैं ना, यू सी यंग पीपल ऑल्सो, वो फिर एडवांटेज ले लेंगे आपका। आपको क्या लगता है जब तक वो मेरे से बात नहीं करता मुझे ठीक नहीं लगता, देन दे कैन एक्सप्लॉइट यू ना।
3: बिल्कुल,
4: आप इमोशनली उनके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप फिर सारा दिन सॉरी सॉरी कहते रहते हैं, अपोलोजाइज करते हैं कि वो ठीक हो जाए। So you will feel good. That means you are emotionally
3: dependent
4: on them. That is not a good thing.
3: तो वो दूसरे का ईगो है कि आप जिसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है जब तक ये छोटे वाले सॉरी हमसे ना बोलें हमारी जिंदगी तो चलती रहेगी लेकिन ये दर्द में रहेगा।
4: हो सकता है कभी कभी आजकल लोग इमोशनली एक्सप्लॉइट कर लेते हैं,
3: तो वो कंट्रोल का ही एक और फैसेट हुआ।
4: का एक और फैसेट है। इसलिए हमें अपनी स्थिति की जिम्मेवारी खुद उठानी होती है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: इट्स 7 o'clock, मिर्ची टाइम चेक।
0: Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
3: It's 7:30 AM, Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
4: Type C cable के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? Mirchi Recharge Mornings, सुबह 6 से 8, only on Mirchi. It's hot.

0: Ritchie Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari's sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूँ तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, ऐसा क्यों होता है?
2: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम समबडी वाज शेयरिंग कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। तो फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था,
1: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
2: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
1: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
2: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
1: उस समय वो ना करे।
2: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते। हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है, वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब। हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना।
1: बिल्कुल।
2: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल हैं और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है।
1: और अगर अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा। अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो।
2: जी,
1: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स की शुरुआत। अगर आज सुबह तुम कॉफी से पहले एक्सेल शीट देख चुके हो, फर्स्ट ऑफ ऑल हैशटैग रिस्पेक्ट, सेकंड ऑफ ऑल ये शो तुम्हारे लिए ही है। व्हेदर यू आर ड्राइविंग टू वर्क, प्रिटेंडिंग टू लिसन इन अ मीटिंग, मील प्रेपिंग व्हाइल इमोशनली अटैच्ड टू लेफ्टओवर राजमा, वेलकम होम। यहाँ पर हम करने वाले हैं थोड़ा सा बॉलीवुड का तड़का, थोड़ी सी बकबक, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया एंड फुल ऑन मिर्चीदार वाइब्स के साथ हमारे दिन की शुरुआत, बिकॉज यार उसके अलावा किसी तरह से शुरुआत होनी भी नहीं चाहिए। डेजी टाइमिंग कहता है अब उठने का टाइम हो चुका है क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स शुरू हो चुका है। वैसे एक बात और, अगर तुम्हारा अलार्म और तुम्हारा एम्बिशन आज फाइट कर रहे हैं तो आई एम टीम तुम, आई एम रूटिंग फॉर यू, यू विल सर्वाइव। सो वॉल्यूम फुल, स्माइल रखो ब्यूटिफुल और मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ बने रहो मिर्ची मॉर्निंग्स पर। फटाफट से जाओ मुझे फॉलो भी कर लो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम इंस्टा और एक्स पर, एंड व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो मुझसे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। राइट नाउ स्टे ट्यून्ड एंड स्टे

0: Mirchi. Escabana, pues cabana, sacabana.
1: ¡Rámbala!
0: ¡Burga, burga! ¡La vieja la burga! ¡Mirchi, burga!
2: ¡Aló!
3: ¡Aló, esto más se mata, Javier! ¡Aló!
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब इसको वहां से मत उठाओ यार ऐसे नहीं उठाएगा यार टूट जाएगा सारा सामान टूट जाएगा वहां से मत करो उसको वहां से हेलो हेलो भाई साहब
2: हाँ जी बोलो
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन
2: हाँ जी देते
3: एक सेकंड होल्ड करना उसको वहां से मत उठाओ यार मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे मत उठा नहीं उठेगा तेरे से ये सामान भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ ये मशीनें बंद कर दे मशीनें बंद कर दे सारी मशीन बंद कर दे शायद सारी बंद कर दे ये गिर गया है और इसको उठाना है यार ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है कितना सामान उठाता
2: है जी उठवा लेंगे उतना ही हम
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को हाँ ये आप ये भेज दो इसको उठवा दो यार ये तो गिरा पड़ा यार ये इसकी वजह से सारी परेशान है
2: किसको जी
3: सेंसेक्स गिर गया है इसको उठवा दो आप
2: क्या गिर गया
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो सेन नीचे रह जाए तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी
2: भाई साहब क्या उठवाना है
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको
2: सामान
3: उठवाना
2: क्या कर रहा
3: तो मार्केट गिर गया यार मार्केट गिर गया उसमें सारे सारे परेशान है यार आप उठवा नहीं सकते तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ सेंसेक्स गिर गया यार
2: उठवाना है
3: तीन क्रेन भेज दो सेंसेक्स उठवा दो यार कब से गिरा पड़ा हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते मार्केट की बात कर रहा था क्रेन किराए पे देते हैं आपका मुर्गा बन गया आप रेडियो मिर्ची पे हैं हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति अधिक जानकारी के लिए 7323578200 जय गुरुदेव
9: वाओ यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन
11: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
12: Chamakte Sitare 2026.
11: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianikaacademy.com.
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
17: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है एक ही होता है जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है रेडियो का बच्चन कहो या कोहली न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं इट्स हॉट
5: मिर्ची फ्रेश माल
18: हाई वोल्टेज बीट्स और अनस्टॉपेबल ग्रूव के साथ सुनो माशुका

0: गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। और आज की डेट यानी कि 5th of June, पता करते हैं हिस्ट्री में क्या हुआ था। 1915 में डेनमार्क सेड एक्सक्यूज मी इक्वालिटी प्लीज एंड ऑफिशियली गेव वुमेन द राइट टू वोट। 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश बॉम्बर्स हिट टारगेट्स इन नॉर्मंडी सेटिंग द स्टेज फॉर डी डे। 1967 में द 6-day वॉर बिगान एंड चेंज्ड द मैप ऑफ द मिडल ईस्ट इन वेज स्टिल टॉक्ड अबाउट टुडे। 1968 में यूएस सेनेटर रॉबर्ट एफ कैनेडी वॉज शॉट शॉर्टली आफ्टर अ मेजर इलेक्शन विक्ट्री। 1972 में द यूएन created World Environment Day, because even back then Earth was giving subtle hints ki guys maybe recycle. 1981 में doctors published the first medical report of what the world would later know as AIDS, a moment that changed public health forever. And in India, 1984 में Operation Blue Star began, becoming one of the most discussed chapters in modern Indian history. Now catch me on social media, जहाँ पर मेरा handle name है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: The

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and this is Mirchi Mornings and आज की headline has entered the chat. It's about Aamir Khan. कल मैंने तुम्हें बताया था he is getting married, ऐसे rumors उड़ रहे हैं and the actor has now confirmed he'll tie the knot with his girlfriend Gauri Spratt on July the 5th and he said they both feel ready to take the relationship to the next level. And can we appreciate the optimism? Some people give up after one bad situationship. Meanwhile, Bollywood said picture abhi baki hai mere dost. Aur wo dost hai Aamir Khan. Also, side quest unlocked. बहुत सारे लोगों को suddenly याद आया कि आमिर खान बहुत ज्यादा अमीर भी हैं real life में. आमिर के पास है luxury homes, fancy wheels and enough real estate to make anyone emotional. But आज की headline isn't assets, it's commitment. Moral of the story ये कहती है कि whether it's first love or third love or 30th love or just finally replying to that WhatsApp message after 6 business days, people move at their own pace. And so does आमिर खान जो अब तीसरी शादी बहुत जल्दी करने वाले इनफैक्ट एक महीने में करने वाले एग्जैक्टली आज से हमारी तरफ से तो आमिर खान सर के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस हैं एंड आई जस्ट होप ये उनकी फाइनल शादी हो एंड नाउ लेट्स हेड इनटू मिर्चीदार म्यूजिक बट बिफोर दैट यू गो एंड फॉलो मी इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. Priscilla here, and welcome to your Mirchi Mornings ka weather update. Kyunki weather check karna before outfit selection is basically adulting. Right now, it's a cool 60 degrees Fahrenheit and clear skies. Lekin wind jo hai, it woke up feeling extra. So, it's making us feel 57 degrees Fahrenheit. Translation ye hai ki bahar nikloge to t-shirt nahi hoodie pehenkar jana padega. Good news ye hai ki zero rain in the last 24 hours and zero rain is expected in the next 24 hours. Umbrella aaj officially day off le sakte. मॉर्निंग में अराउंड 9 से 10 के बीच में थोड़ा सा पार्ट टाइम क्लाउडी हो जाएगा विच वोंट कॉज अ लॉट ऑफ ड्रामा इन योर लाइफ बट देन बाय अराउंड 1 PM क्लाउड्स बिकम मोर कमिटेड एंड थिंग्स विल बिकम मोस्टली क्लाउडी आज वैसे एक एयर क्वालिटी अलर्ट भी है दीज कंडीशन स्टार्टेड एट 15:45 थर्सडे और आज का टेम्परेचर रेंज भी देख लेते इट्स गोइंग फ्रॉम 60 ऑल द वे अप टू 90 डिग्रीज फारेनहाइट विद सनशाइन एंड कंडीशंस डूइंग देयर थिंग इट कुड एक्चुअली फील लाइक 92 डिग्रीज फारेनहाइट अब बाहर निकलोगे तो SPF 50++ लगाकर ही जाना लेयर के प्लेयर बनना एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड और अभी मिर्ची को ऑन रखो क्योंकि मैं बोले तो प्रिसिला तुम्हारे साथ में हो ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मुझसे बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची दैट्स 9033647244 स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Burga, burga, burga. La virpa, la burga.
0: Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कप से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ मेरी बात खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं
3: नहीं, बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट, ये पटा.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
7: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
9: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
10: Chamakte Sitare 2026.
9: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
11: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
12: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
13: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
14: Oak Tree Road Low, best diamond jewelry kosam search is the Nara Krishna Jewelers Me exclusive diamond store.
15: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, Mario stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
16: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
17: Tera kya hoga, Kalia?
18: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
17: अब मिर्ची खा.
19: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
4: मिर्ची, फ्रेश माल.
2: रेट्रो मैजिक और डांस फ्लोर एनर्जी के साथ सुनो चुनरी चुनरी, लेट्स गो.
6: अच्छा.

0: इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
2: Good morning, guys. This is Priscilla and welcome to Mirchi Mornings. So there was this dog in China named Shatu. Not just any dog, but an internet famous travel buddy with over 1.5 million followers. Lekin recently, Shatu went missing. And later, according to reports, the owner discovered the dog had reportedly been mistaken for a stray, taken and sold. And the story has sparked a lot of emotions online and conversations around pet identification, safety and how quickly situations can escalate. And honestly, whether someone has 1 follower or 1 million followers, pets are family. Also, tiny reminder for all the pet parents listening to me, while your dog judges your life choices from the couch, कॉलर्स, टैग्स, अपडेटेड इन्फोज, ये सब बोरिंग है अंटिल सडनली इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. सो आज का लेसन ये है कि फेम डजंट रिप्लेस सेफ्टी एंड लव इज इन मेजर्ड इन फॉलोअर्स. वैसे इफ यू वांट टू कैच मी फॉर मोर स्टोरीज या मोर चाय टाइम गॉसिप, इंस्टाग्राम और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
3: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मडेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
2: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
4: अभी न जाओ छोड़ कर।
3: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
5: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
5: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
8: पहले भी मैं तुमसे मिला।
9: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
10: विशाल मिश्रा
3: Jaitley of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
11: and SaiUSAInc.com.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
16: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, guys. This is Priscilla with you and welcome to Mirchi Mornings. यहाँ पर अब हम celebrate करने वाले हैं birthday, वो भी तुम्हारा. So first of all, happy birthday to you. Virtual cake खा लो मेरी तरफ से. And calories तो radio पर count ही नहीं होती है. And guess what? You're sharing your birthday with some seriously cool people. You've got Mark Wahlberg. ये actor हैं, producer हैं, and proof that waking up at 4 AM can actually lead to success. Then there is smooth jazz king Kenny G. And then we have comedian Jeff Garland. और हमारे देसी स्क्वाड में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ साथ में वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टर्स इंडिया हैज विजय राज जी, एंड बिजनेस आइकॉन इंदिरा नूई. एंड बॉलीवुड थ्रोबैक अलर्ट, बर्थडे लव टू रंभा, हु रूल्ड द 90s एंड 2000s अक्रॉस लैंग्वेजेस. और साथ साथ में मैं हूं ना मूवी में शाहरुख के छोटे भाई लक्ष्मण का रोल प्ले करने वाले जायद खान, उनका भी आज हैप्पी वाला बर्थडे है. तो अगर तुम्हारा भी आज हैप्पी बर्थडे है तो मेन कैरेक्टर एनर्जी एक्टिवेट कर लो. Buy the dessert, take that selfie, don't worry about the calories and reply late to all emails. Aaj ke din sab kuch tumhara constitutional right ban jata hai. And of course, you can send me your shout outs ya phir mujhe tag kar sakte ho apne birthday pictures mein. Mera handle name hai Mirchi Pris on Instagram and X, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
6: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
7: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और अब एक्सक्लूसिवली गोल्ड एंड सिल्वर का रेट का हालचाल जानने वाले हैं हम।
2: राज जूल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,460, $4,460 पर ट्रायंस आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। अगर पिछले साल आज ही के दिन गोल्ड के प्राइस कंपेयर किए जाए तो $3,375 से $4,460 पर ट्रायंस आज गोल्ड का प्राइस ट्रेड कर रहा है। डिफरेंस आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते रहें। राज ज्वेल्स के साथ पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स ऑल डिनोमिनेशंस, 10 ग्राम, 1 आउंस, 100 ग्राम एंड किलो बार्स। पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। आइए राज ज्वेल्स की टीम के साथ रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू।
1: And there you have it, gold and silver का rate update सुना तुमने exclusively on Mirchi Mornings। मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे सोशल मीडिया पर, Mirchi Pris is my handle name, MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर 9033 Mirchi is my number, that's 9033647244। Stay tuned and stay hot।
0: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: This is Priscilla and welcome to Mirchi Hour ka 3. Yahan par tumhe milti hai around the world ki khabrein on Mirchi Mornings. सबसे पहले रीसेंट वायरल मोमेंट फीचरिंग इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी गिफ्टिंग मेलोडी ट्रॉफीज टू इटलीज पीएम जॉर्जिया मेलोनी क्रिएटेड व्हाट द इंटरनेट लविंगली कॉल्ड द मेलोडी इफेक्ट एंड प्लॉट ट्विस्ट है अ बेंगलुरु स्टार्टअप मेकिंग मेलोडी इंस्पायर्ड इयररिंग्स रिपोर्टेडली सॉ सेल्स जंप एंड सोल्ड आउट फास्ट आफ्टर द क्लिप टुक ऑफ ऑनलाइन एंड नंबर टू पर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी रिसेंटली मेट विद वेनेजुएलास एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेस एंड वन बिग टॉपिक ऑन द table was long-term crude oil cooperation. In simple language, India is looking at strengthening energy supply options and keeping more doors open when it comes to where oil comes from. Because global supply routes have been under pressure recently and countries everywhere are trying to avoid putting all the energy eggs in one basket. Venezuela has been describing India as a preferred energy partner while both sides explore deeper cooperation. And number three, per actor Janhvi Kapoor drew attention online after a liking a post criticizing how her upcoming movie Peddi presents her character. The post questioned whether female characters sometimes get reduced visually instead of being given fuller roles. And fans online have been sharing different opinions. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour with me Priscilla on Mirchi Mornings. Connect with me in store expert. Mera handle hai Mirchi Pris and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. ¡Rambala! Burga, burga. La virgo a la burga. ¡Mirchi, burga!
1: Hello,
2: Mr. Gotham. Sir, may I actually ask sir, have a request karna chahta hu. Main aap suna hai aap wo singing, winging sikhate hai sir. To sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na, wo sir thode different hote hain.
1: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi.
2: Pehle mohalle mein mere snake nikla tha. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
1: सर कुछ गा के सुनाइए
2: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है एनाकोंडा आपने एनाकोंडा फिल्म देखी है
1: अरे काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ
2: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया एनाकोंडा में यही बात है मेरे लिए मैं एक पेशकश कर रहा हूँ तने डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा
1: सुन ले बात मेरी
2: बात सुन
1: पहले बात
2: हाँ सर
1: और इसे बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात है
2: जी सर
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया मुर्गा बन गया आपका

0: वेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव गायत्री चेतना सेंटर पिस्केटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 7323578200 जय
4: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
5: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
6: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
7: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है
8: पहले भी मैं तुमसे मिला
9: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा
10: विशाल मिश्रा
7: Jetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life Vishal Mishra's Pagalpan Tour Friday, June 26th Hard Rock Live ETS Arena Atlantic City Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com
11: Tera kya hoga Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar
11: Ab Mirchi kha
13: Radio Mirchi It's hot

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर राशि जोन नंबर वन।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी मेष राशि, आज यूनिवर्स बोल रहा है स्टॉप ट्राइंग टू रिक्रिएट 2019 की एनर्जी। इट्स न्यू सीजन, न्यू यू, बी फ्लेक्सिबल। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ग्रीन, लकी नंबर इज 14, दैट ऑलमोस्ट राइम्ड। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, विन विन मोड ऑन कर लो, हर कॉन्वर्सेशन डिबेट नहीं होती है, शेयर क्रेडिट, शेयर फ्राइज, शेयर पीस। लकी कलर इज मैंगो गोल्ड, लकी नंबर इज 22। जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज के दिन जो बोलोगे वो सब बहुत मैटर करेगा, कोई उसे अगर चेंज करने की कोशिश करे तो तुम्हें कॉन्फिडेंट है। मेन कैरेक्टर एनर्जी रहना है, साइड कैरेक्टर नहीं। लकी कलर इज मिडनाइट ब्लू, लकी नंबर इज 5। कैंसर यानी कर्क राशि, छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती है, कोई ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं जो हर चीज को रख के रखोगे। यू आर ह्यूमन, नॉट कस्टमर सपोर्ट ऑन होल्ड। लकी कलर इज सॉफ्ट लैवेंडर, लकी नंबर इज 17। लियो यानी कि सिंह राशि, ड्रामा फोरकास्ट लो, कॉन्फिडेंस फोरकास्ट इज राइजिंग। आज तुम जो वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे थे वो प्रोबेबली उतना सीरियस नहीं है, पता लग जाएगा तुम्हें, सो रिलैक्स करो सुपरस्टार। लकी कलर इज सनबर्स्ट एंड लकी नंबर इज 33। वर्गो यानी कन्या राशि, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में, इंस्टेड ऑफ व्हाई मी ट्राई प्लॉट ट्विस्ट एक्सेप्टेड। लाइफ कभी कभी जीपीएस रीराउट करती है, डेस्टिनेशन सेम है, स्टोरी थोड़ी सी बेटर हो गई है। लकी कलर इज ग्लेशियर सिल्वर, लकी नंबर इज 9। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन नंबर 1। बाकी बची 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। तब तक तुम जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with...

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हेलो देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। वेलकम बैक टू राशि जोन पार्ट टू ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, देखो अभी लाइफ में फंडा ये रखो कि जो आ रहा है वो वेलकम, जो जा रहा है वो भीड़ कम। कॉस्मिक बातों में लॉजिक नहीं देखा जाता है। वैसे तुम्हारी लाइफ में बिगर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, वेट फॉर देम। लकी कलर इज रोज गोल्ड, लकी नंबर इज 4। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आज माइंड ओवर मूड है। डोंट लेट टाइनी वरीज बिकम मिनी सीरीज इन योर हेड। अपनी एनर्जी को रीडायरेक्ट करो, यू आर स्ट्रॉन्गर देन योर ओवर थिंकिंग। लकी कलर इज डीप प्लम, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज ऑनेस्टी का सब्सक्रिप्शन एक्टिव रखो। सीक्रेट्स इवेंचुअली लीक फास्टर देन चाय इन अ पेपर कप। लकी कलर इज ओशन ब्लू, लकी नंबर इज 22। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, प्रोग्रेस इज हैपनिंग, नॉट जस्ट इन बॉलीवुड मॉन्टाज स्पीड, वन स्टेप वन ईमेल वन कॉफी एट अ टाइम, ट्रस्ट स्टेडी विंस। लकी कलर इज सिनेमन ब्राउन, लकी नंबर इज 36। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, ब्रेन फीलिंग ओवरलोडेड, छोटे छोटे पॉजेस लिया करो लाइफ में, नॉट एवरी थॉट डिजर्व a TED talk. Okay, weekend energy is already waving at you. Lucky color is Arctic mint, lucky number is 11. And last but not the least, Pisces yani mean rashi, protect your confidence today. Kisi aur ka mood tumhara personality test nahi hai. Stay soft, stay strong and stay unbothered. Lucky color is moonlit aqua, lucky number is 24. And that's your cosmic tea for today. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Abhi filhal chalate hain garma garam mirchi dar bangers. While you go and follow me on Instagram and X, mera handle name hai mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS, and WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, that's 9033647244. Drop me your messages, stay tuned and stay hot.

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानी।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन। Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
5: Chamakte Sitare 2026.
4: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
6: Tera kya hoga, Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
6: Ab... मिर्ची का
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

ऑन मिर्ची। देखो यार, अगर आपको ऐसा लगता है जब आपसे कोई ऐसा सवाल करता है कि यार हाय ये सवाल का जवाब तो मैं कैसे दे दूं, और आपको ये लगे इस सवाल के बाद कि यार हाँ आई एम नॉट रियली हैप्पी इन माय लाइफ, तो घबराओ मत, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि देखो हमें तो बचपन से हैप्पीनेस पर ज्ञान ही दिया गया है, लेकिन सच तो ये है बॉस कि हर कभी खुश रहना मुमकिन नहीं है, और हर रोज खुद को ये बात कहकर कि मैं खुश नहीं हूँ दुखी करना, दैट्स ऑल्सो वेरी अनफेयर यार। क्योंकि लाइफ तो इज ऑल अबाउट कभी खुशी कभी गम, बट लाइफ में जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए ना, दैट इज नॉट हैप्पीनेस, वो तो कभी आएगी कभी जाएगी। जो कॉन्स्टेंट होना चाहिए दैट इज पीस ऑफ माइंड। तो अगली बार कोई आपसे जब ये सवाल करे, आप खुद से सवाल कर रहे हो ना, तो ये सवाल मत पूछना कि आप खुश हो कि नहीं हो, क्योंकि कभी होगे कभी नहीं होगे, लेकिन ये सवाल जरूर करना कि हाँ ठीक है खुश नहीं है, लेकिन क्या एम आई एट पीस? गम आएगा जाएगा, खुशी आएगी जाएगी, लेकिन पीस ऑफ माइंड, इसकी तलाश इज मोर इम्पोर्टेंट देन खुशी की तलाश। एंड विद दिस, मिड मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई 90 के दौर की बातें और गानों की तलाश शुरू करते हैं, और आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Pisca bana, pusca bana, saca bana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka.
1: Mirchi, burka. Hello.
2: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
1: हेलो
2: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन?
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद तो सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको बता दो। नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
2: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
8: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
9: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा,
16: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2. इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: The film starring Shah Rukh Khan, Pooja Bhatt, Revati and Nasiruddin Shah was directed by Mahesh Bhatt. लेकिन ये फिल्म पहले सनी देओल के साथ बनने वाली थी।
2: नब्बे की गप्पे।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And सनी देओल को चाहत के लिए ले तो लिया गया था, लेकिन कहा जाता है कि सनी और भट्ट साहब के बीच में डिफरेंसेस आ गए। And सनी decided to never work with भट्ट साहब। और फिर सनी घायल में काम करने लगे। Rumors से कि महेश भट्ट knew the storyline of घायल and he made चाहत based on the same story। एक small town लड़का जो अपने फादर को शहर लाता है कैंसर का इलाज करवाने के लिए and he ends up fighting the bad guy। जहां घायल के कम्प्लीशन में टाइम थोड़ा ज्यादा लगा, चाहत इन द सेम ईयर रिलीज हो गई और घायल से पहले रिलीज हुई, लेकिन फ्लॉप भी हो गई, बट घायल बिकेम अ हिट। अगर ये रूमर सही है ना, तो यहाँ ये डायलॉग तो बनता ही है बॉस, कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
4: विश्व को भारत का उपहार योग है, अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
3: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
5: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
6: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
7: in association with World Vegan Vision.
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
11: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
12: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
13: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
14: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
13: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
15: अभी न जाओ छोड़ कर।
14: 28th June, 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
16: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
17: कोहली goes down the ground, कोहली goes out of the ground.
16: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
18: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
16: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
19: एक ही होता है।
16: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
6: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటేర్స్ నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 90s के फैन हो, म्यूजिक को अच्छे से समझते हो, तो चलो फिर दिस चैलेंज इज फॉर यू।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और देखो यार, मान ना मान करो गानों की पहचान इज वो हिस्सा हमारे शो का जो ये आपको भी पता लगवा देगा कि आप 90 के बॉलीवुड के कितने बड़े फैन रहे हो, क्योंकि मैं आपको दो गानों की धुने मिक्स करके सुनाने वाली हूँ और आपको पहचानना है कि ये दोनों गाने जो अलग अलग हैं, ये कौन से गाने हैं। वेल, आज के लिए धुन है

और इस पहेली को थोड़ा सुलझाने के लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ, ये दोनों गाने शाहरुख खान की फिल्मों के हैं। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, आगे आप बोलेंगे। मुझे एक वॉइस नोट भेजिएगा, डीएम करिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विद द आंसर कि इन दोनों गानों के कौन से नाम है, आपका नाम और एक छोटा सा मैसेज। डीएम करो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। इसी के साथ कमिंग अप द नेक्स्ट ट्रैक, स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिटर और स्वरा वर्मा की आवाज, मिटर और की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है शीशा, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये वो गाना है जो रिलीज पहले हुए, ट्रेंड बाद में हुए और फिर से री रिलीज हुए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: अक्सर कहा जाता है कि गानों की शेल्फ लाइफ होती है, लेकिन कुछ गाने उसके ऊपर होते हैं। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मुझे फॉलो करो, मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई बातें बतानी हो, कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई रियली ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है। इनफैक्ट आई लव व्हेन यू रीच आउट टू मी एंड मुझसे पूछते हो कि यार कनिका, वो गाना नंबर 6 जो सुना था उसका नाम याद नहीं है, वापस बताओगे क्या, या आपने वो वाले गाने की धुन सुनाई थी, मुझे फिर से याद करना है। आई लव टू बी दैट पर्सन जो आपको गाने सजेस्ट कर रही है। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं, कुछ धुन ऐसी होती है, हम जब भी सुने, कहीं पे दूर कहीं कोई चला रहा है, वहीं धुन सुन के हमें पूरा गाना याद आ जाता है। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक ऐसा ही म्यूजिक सुनाया था, आपको गेस करना था ये कौन से वाला गाना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनो। Answers. It is Mercy by Badshah. Music भी ऐसा है कि कहीं से भी आप सुनते हो and you just know the song. Countdown का जो अगले वाला गाना है, that's a Himesh Reshammiya song. एक नई नवेली एंट्री है. Before we move on and we play the song, Himesh Reshammiya is also exactly that artist जिनके जो गाने हमें पसंद है, जो गाने हमारी नब्स पकड़ के बैठ गए, वो आप कहीं से भी सुन लो, आप एकदम बता सकते हो। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ाइए। इंडी पॉप क्विज ऑफ अ हिमेश रेशमिया सॉन्ग, मैं आपको एक गाने का इंट्रो म्यूजिक सुनाने वाली हूँ, आपको गेस करना है ये कौन सा गाना है। @RJKanika इंस्टाग्राम पर आके बताओ ये कौन सा गाना है।

आई नो यू नो द राइट आंसर, साइट वाले को भी बताओ @RJ करेगा, पर जल्दी जल्दी मुझे आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई, आके बताओ। एक हिंट देती हूँ, इस गाने में दीपिका पादुकोण भी है। नाउ बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाला जो गाना है इट्स अ नई नवेली एंट्री। हिमेश

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Bana. Burga, burga. Nabir wala burga. Mirchi burga.
3: Hello.
4: Hi Shivani.
3: Hi.
4: Hi Shivani, congratulations. Mubarak ho, gaadi khareed li.
3: Haan, thank you very much. Aap kaun bol rahe hain?
4: Shivani, kaun si gaadi khareedi hai? Mujhe to abhi bataya. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा.
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ. शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा.
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है. तो कोई नई गाड़ी मुझे, वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3
3: करता
4: हूँ. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी.
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना. शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं
4: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
3: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन.

0: स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
0: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest-running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155।
8: इंडी टॉप 10
9: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
10: नंबर 7।

0: मस्ती खोरी इज प्रो मैक्स इन दिस सॉन्ग. अदनान सामी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, महिमा भारद्वाज के लिरिक्स. गाने का नाम है लिपस्टिक. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका. दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika. कोई गाना सजेस्ट करना है, कोई बात बतानी हो, जल्दी आके बताओ. मैं बुरा नहीं मानूंगी कि मैं दो बार बोल के आपको बोल दूंगी कि फॉलो करें, क्योंकि इंटरनेट ने ना हमारी टाइमलाइन ही खराब कर दी है. दो रील्स नहीं चलती, दो प्रोजेक्ट फेल हो गए, मैंने दो बार बोला, आपने नहीं सुना, मैं निराश होकर नहीं बैठ सकती कि जो होना था हो गया. अक्सर ऐसा होता है, हम जिनके साथ काम करते हैं, हमारे दोस्तों के साथ, खुद के साथ, एक पूरी दिन की मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, we all feel like कि बस यार हो गया, अब कुछ और. And that's when I look for inspiration हमारी अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में. Think about artists like हिमेश रेशमिया, अदनान सामी. उनके दो गाने हमने इस countdown पर सुने हैं. सुनिधि चौहान जैसे आर्टिस्ट जो रेगुलरली अपने आप को रीब्रांड करते हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं. ऑडियंस बदल गई, प्लेटफॉर्म्स बदल गए, म्यूजिक का अंदाज भी बदल गया, लेकिन इन्होंने अपनी जगह वही बना रखी है. एंड ऑनेस्टली दिस इज नॉट एट ऑल इजी. नए लिसनर्स को विन करना बिना अपनी आइडेंटिटी को लूज किए, अपने पुराने फैंस को साथ रखना बिना वही सेम चीज रिपीट करे, एंड द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज हर दिन इतने सालों के बाद भी इतना क्रिएटिवली एक्साइटेड रहना. ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज में हम इंस्पिरेशन ढूंढते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव कि जो लॉन्जिविटी वाली स्टोरीज होती है, यहाँ असली इंस्पिरेशन है. अदनान सामी के 2000s वाले गाने भी पसंद थे, एंड जो हमने सुना गाना लिपस्टिक वो भी बहुत पसंद है. काउंटडाउन के जो अगले वाले आर्टिस्ट है, ही इज किंग ऑफ रेलिवेंसी. वो अपने आप को कंटिन्यूअसली रीबिल्ड करते रहते हैं और नए फैंस को अपने साथ जोड़ते रहते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ. उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है डीलर. दिलजीत दोसांझ का गाना दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का गाना ए अजनबी. पिछले हफ्ते से 4 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 5. ये दोनों गाने बैक टू बैक, दिलजीत दोसांझ का डीलर और नंबर 6, आदित्य रिखारी, रैवट और कुटले खां का ए अजनबी, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग, और नंबर 5 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 6.

0: And the song we're going to feature this week is
1: Krishna ni begane baro Krishna ni begane.
0: Gaane ka naam hai Krishna by the one and only Colonial Cousins. This song is truly revolutionary. I don't think is gaane ko hum kisi bhi ek box ya era mein fit kar sakte hain. Ye gaana 1996 mein release hua tha, but if you think about it, it looks like aaj kisi studio se fresh produce hoke aaya hai. Colonial Cousins were definition of fusion. Ek taraf Hari Haran ji, who is classically trained ghazal singer, and dusri taraf Leslie Lewis, who's all about English rock and roll and pop. Dono ne saath mein milke banaya Colonial Cousins, jinki sound आज भी रेवोल्यूशनरी है। 1996 में उनका डेब्यू एल्बम आया जिसका पार्ट है ये गाना कृष्णा। इंडियनाइज भी है, वेस्टर्न भी है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल भी, कुछ लोगों के लिए वीडियो फर्स्ट, बट दिस सॉन्ग कृष्णा, आई रिमेम्बर जब पहली बार मैंने सुना था तो मुझे लगा ये गाना डिवोशनल गाना है। मैं तब छोटी थी। गाने की ओपनिंग एक कर्नाटक कॉम्पोजिशन से होती है, पर धीरे धीरे जब गाना प्रोग्रेस होता है, देन यू विल रियलाइज दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग इनटू लेयर्स एंड लेयर्स एंड इट्स टचिंग द टॉपिक ऑफ वायलेंस, ग्रीड, लोनलीनेस। और फिर वो लाइन आती है जो कहती है कम बैक as Krishna, as Jesus, as Allah, as anyone. And this is where this song becomes extra special. What I absolutely love about Colonial Cousins is that unhone indie pop music ko sirf romance ya dance tak seemit nahi rakha. Unhone prove kiya that independent music thoughtful bhi ho sakta hai, spiritual bhi ho sakta hai, and yet mainstream audience se connect kar sakta hai. Unhone radio sets ki volume badha lijiye. This is a song jisko sunke main tab bhi jawab dhoond rahi thi, aaj bhi jawab dhoond rahi hu. Colonial Cousins ka 1996 ka track. This is Krishna playing right next for you on our cassette classic this week. You are listening to Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai Kanika. Enjoy.

0: वो क्लीशे कहते हैं ना कि किसी गाने को सुन के वक्त थम गया है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई फील अबाउट दिस सॉन्ग. एब्सोल्युटली टाइमलेस मेलोडी, टाइमलेस ट्रैक. गाने का नाम है कृष्णा बाय कॉलोनियल कजन्स ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. एट आरजे कनेक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ. एंड 90s एंड 2000s का वो जो भी इंडी पॉप गाना है विच स्टिल मेक्स यू फील लाइक यार ये वाला गाना हिट्स होम, हमें आकर बताओ. मैं और अश्काय, माय साउंड प्रोड्यूसर, हम दोनों आपकी रिक्वेस्ट का बेसब्री से इंतजार करते हैं. वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाले गाने की बारी है. इट्स अनूप जैन सॉन्ग, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग. 18 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. अर्ज किया है पिछले हफ्ते से, एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10 बद्दी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: Ana Indie Top 10 Kanika Kasat on Mirchi.
1: Mirchi sun rahe hain aap. This is the Ghana Indie Top 10. Badi ka naam hai RJ Kanika. This is the show where we bring to you the hottest pop songs of the week. Hafte ke top 10 hottest pop gaano mein ek nayi entry ho chuki hai. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Now before we move on to the top 2 songs of the week, a quick recap right from the top. Gaana number 10 par tha Mika Singh Daya the rapper ka Chori. Chori karti jumper, chore ne de diya bumper. फिर मिट्टर और स्वरा वर्मा का शीशा ऑन गाना नंबर 9. तेरे आगे पीछे लगे सुन दोना छोरी का हर रंग. गाना नंबर 8 पे नई नवेली एंट्री मारी है हिमेश रेशमिया के शराब ने. अदनान सामी का लिपस्टिक ऑन गाना नंबर 7. लिपस्टिक लगा के नजर उतार ले. दिलजीत दोसांझ का डीलर ऑन गाना नंबर 6. जिधर तू पीछे यातनगी ना चौपर जोगी डब दबी ना. उसके बाद आदित्य रिखारी रैवट और कुटले खां का ए अजनबी ऑन गाना नंबर 5. दिलजीत दोसांझ सिया का गाना रांझा दिस वीक ऑन गाना नंबर 4. अनूप जैन का अर्ज किया है ऑन गाना नंबर 3. कायर जो थे वो शायर बने अब क्या क्या करें ये इश्क में. गाना इंडी टॉप 10 पर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक पिछले हफ्ते से 2 पोजीशन नीचे ड्रॉप होके बंजारे का गाना, गाने का नाम है बैरन, 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक येट अगेन 3 पोजीशंस ऊपर जंप करके करण औजला इक्की और बॉयफ्रेंड, 26 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बॉयफ्रेंड इज येट अगेन ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैक टू बैक, बैरन ऑन नंबर 2, बॉयफ्रेंड ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

आपको पता है लता मंगेशकर जी के साथ एक इंटरव्यू में जब इस गाने का जिक्र हुआ था, जुर्माना मूवी का ये गाना सावन के झूले, तो क्या हुआ था? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस गाने का जब जिक्र हुआ उस इंटरव्यू में तो लता जी की आंख में आंसू आ गए। ये गाना उनके दिल के बहुत करीब था फॉर सम पर्सनल रीजंस जो उन्होंने कभी डिस्क्लोज नहीं किए। और ये गाना कितना सुंदर है भाई, कितना सुंदर है। मुझे म्यूजिक की इतनी जानकारी तो नहीं है लेकिन मैंने कहीं ये पढ़ा था कि ये राग पहाड़ी पर बेस्ड है, आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन। और क्या लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, एक लाइन है बहुत ही सुंदर इसमें कि दिल ने पुकारा तुम्हें यादों के परदेश से, दिल ने पुकारा तुम्हें यादों के परदेश से, आती है जो देश से, हम उस डगर पे हैं कब से खड़े, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, तुम चले आओ। ओए होए, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: क्या बना
2: मुर्गा मुर्गा नबियत वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: मिस्टर गौतम,
4: कौन बोल रहे हैं?
5: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
4: ऐसा कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
5: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
4: हाँ, सर कुछ गाके सुनाई।
5: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर। वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
4: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज दो।
5: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
4: कौन से गाने
5: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ। तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
4: सुन ले बात,
5: मेरी बात
4: सुन, पहले बात सुन।
5: हाँ सर,
4: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
5: है। सर बोलिए,
4: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
5: जी सर।
4: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
6: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया।

0: Mergi Morga, nu vei de chesat, only on Mergi. It's hot.
1: Yep, again.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Inefficient.
5: Very complex.
6: Clumsy.
7: Confusion ही confusion.
2: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक. Software एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है.
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
15: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा, सुरेश वाडकर साहब ने 1976 में एक सिंगिंग कंपटीशन जीता, उसके बाद उनका करियर शुरू हुआ। इस कंपटीशन में वन ऑफ द जजेस थे जयदेव, और जयदेव साहब ने उनको उनका ब्रेक थ्रू गाना दिया। सुनिए इस गाने के बारे में, एक बार सुरेश वाडकर साहब ने एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: एक दिन सुबह सुबह फोन आया जयदेव जी का कि सुरेश आ जाओ जरा मिलो, बहुत सुंदर एक गजल बनी है, फिल्म बन रही है गमन, मेरे लिए तुमको गाना है। तो उन्होंने सिखाया गाना और फर्स्ट टेक उसका ओके हो गया। जब मैंने सुना तो थोड़ा दुखी हो गया, वो बैकग्राउंड में गाना था और तो वो साउंड भी दूर से आ रही है क्योंकि वो सिचुएशन वैसी थी, मगर मैं दुखी हो गया था। तो मैंने पापा जी कहता था प्यार से जयदेव जी को, तो पापा जी एक और टेक ले लेते हैं। तो उन्हें क्यों, मुझे जैसा चाहिए वैसा आ गया है। तो घर आके मैं एकदम रोने लग गया। तो गुरु जी ने एक क्वेश्चन किया कि भाई जयदेव जी को कैसे लगा, बोले मैंने वो तो बहुत खुश थे, बस हो गया, बस बोलते हैं। अब देखिए, मुझे ये मालूम नहीं था कि उस गाने का क्या रंग बनेगा बाद में। बहुत पॉपुलर हो गया गाना और लोग जानने लगे सुरेश वाडकर कोई नया लड़का आया है।
0: तो सुन लेते हैं खूबसूरत सी गजल पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
10: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
10: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
13: It's 1:30 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, Mirchi kha.
16: Radio Mirchi. It's hot.
0: Purani Jeans. With Charu. Only.

आपको पता है इस गाने का भी रीमेक बन चुका है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, मैं खामोशी के इस आइकॉनिक सॉन्ग की बात कर रही हूँ। हेमंत कुमार जी ने जो गाया है, उन्होंने ही कंपोज किया है, लिखा है गुलजार साहब ने। तो ये रीमेक बना था 1992 में, जब दूरदर्शन पे तलाश नाम का एक सीरियल आया था। जी, उसका टाइटल ट्रैक जो लिखा था योगेश ने और गाया था सुरेश वाडकर ने, सुनिए।

है ना बिल्कुल कॉपी पेस्ट, लेकिन एक्चुअली कॉपी नहीं था क्योंकि प्रॉपर क्रेडिट्स दिए गए थे हेमंदा को। ये सीरियल डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी का था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
6: अब मिर्ची खा.
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जीन्स विद चारू.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 2 p.m. Mirchi Time Check, brought to you by RK Jewels. RK Jewels, jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels, best quality, best price.
2: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
3: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
2: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
4: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाग एंड वेदांग रैना।
3: ये प्यार जहर की तरह होता है।
2: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
3: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
5: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

मैंने ना लाइफ में छोटे होते टीवी पर याराना फिल्म पहले देखी और कालिया फिल्म बाद में देखी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो ऐसा जब हुआ तो मुझे बड़ा शॉक लगा, मेरा दिल टूट गया, क्योंकि याराना फिल्म में अमिताभ बच्चन साहब और अमजद खान साहब ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन कालिया में अमजद खान साहब प्लेज अ विलन। और फिर मैंने अपने घर में किसी से पूछा भी था, मम्मा से या किसी से, कि भाई मम्मा ये तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं। छोटे होते वाला भोलापन, मासूमियत कितनी अच्छी होती है यार, कुछ पता ही नहीं होता है। फिर बड़े होके समझ में आता है कि ये तो रियल लोग हैं ही नहीं, ये जो रिश्ते निभा रहे हैं फिल्मों में ये भी रियल नहीं है, सब नाटक है। चलिए इस नाटक का मतलब ये कालिया फिल्म का ये आइकॉनिक सॉन्ग सुनते हैं, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको बता दूँ? नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
3: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: सामान
4: उठवा
3: क्या
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है रेडियो मिर्ची पे। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Oh no!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: वो जो पहले तुमसे मिला था अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
15: पहले भी मैं तुमसे मिला।
16: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा नॉन अदर देन विशाल मिश्रा,
17: विशाल मिश्रा,
14: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

0: शोले फिल्म को लेकर जावेद अख्तर साहब को, जिन्होंने सलीम खान के साथ मिलकर फिल्म लिखी थी, उनको एक पछतावा है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। सुनिए क्या पछतावा है, एक इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था।
1: आई स्टिल रिग्रेट दैट वन ऑफ माय डायलॉग वाज कट, यू नो व्हेन दे गिव चैलेंज टू गब्बर एंड गब्बर से बहुत दिनों बाद गब्बर को कोई ऐसा आदमी मिला है जो इतनी बराबरी से बात कर सके, अब आएगा मजा। इसके आगे देयर वाज वन लाइन, इसे ऐसा मलिया मेट करूंगा, ऐसा मलिया मेट करूंगा कि पूरे रामगढ़ में एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी। तो मुझे ये अभी, एक तो मलिया मेट इज सो मच लाइक गब्बर वोकैबुलरी, एंड बिसाइड दैट टोटल डिस्ट्रक्शन जो है, इसका डिस्क्रिप्शन जो एक ईंट पर दूसरी ईंट नहीं मिलेगी वाज अ नाइस थॉट, सॉरी फॉर द मॉडेस्टी। अरे यार, दिस डायलॉग शुड हैव बीन देयर, इट वाज अ नाइस लाइन।
0: क्या बात है बताओ, इसी बात पे गब्बर के अड्डे पे चलते हैं, मतलब इस गाने से। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
2: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
1: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
3: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
4: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
3: in association with World Vegan Vision.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
8: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
12: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे, आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिवजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरुदेव।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin. It's 2:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
15: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
16: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
15: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: आपको पता है वैजयंती माला जी की मदर वसुंधरा देवी जी भी तमिल फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन वैजयंती माला जी की परवरिश उनके नाना नानी के घर में हुई और उनकी नानी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो एक्ट्रेस बने। सुनिए इस बारे में वैजयंती माला जी ने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: हमारे जो फैमिली काफी कंजर्वेटिव फैमिली, और तो मेरी नानी जी बहुत चाहती थी कि मैं अच्छी तरह से एजुकेशन मुझे मिल जाए और फिर कुछ उस फील्ड में मैं कुछ बन जाऊं। मगर डांस में बहुत ही वो लगन बहुत रहा, तो वो हमेशा चाहती थी कि मैं अच्छी से एक बहुत बढ़िया डांसर बन। और फिल्मों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, एकदम हो गया, इट जस्ट हैपेंड।
0: और क्लासिकल डांस के साथ साथ उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक भी सीखा था।
1: दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज माई ग्रैंड मदर ऑलवेज सेड दैट म्यूजिक एंड डांस वेंट हैंड इन हैंड, देयर कुड बी नो डांस विदाउट म्यूजिक। So I had to know the fundamentals of music, the basics of music.
0: Well, उनकी ये निपुणता, उनकी ये brilliance, आप उनके डांस में देख सकते हैं। कोई भी डांस उनका उठा लीजिए, इट इज परफेक्ट। जैसे कि इस गाने में जो हम अभी सुनने वाले हैं, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

0: फिरोज खान साहब एक चीज बड़ी अच्छी करते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वैसे तो वो काफी चीजें बहुत कमाल करते थे, लेकिन एक चीज जो बहुत अच्छी करते थे वो यंग टैलेंट को चांस देना। सुनिए, शक्ति कपूर साहब ने एक बार फिरोज खान साहब से अपनी पहली मुलाकात के बारे में एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: मेरी पुरानी गाड़ी, मैं लिंकिंग रोड से अपनी गाड़ी में टाउन के लिए जा रहा हूँ और एक पीछे से मर्सिडीज आती है, कुमारी मेरी गाड़ी ठोक दी यार, जेब में 35 रुपए नहीं है, इस गाड़ी को ठीक कैसे कराऊंगा यार। मैं निकला, मैंने कहा, और उस टाइम 21-22 साल की उम्र, खून आपका गरम, जवानी भरपूर, और मैंने कहा इसको तो पूरा पैसा वसूल करूंगा, नहीं तो मर्सिडीज ही ले जाऊंगा, ये गाड़ी इसको दे दूंगा, मर्सिडीज लेके घर जाऊंगा। उस गाड़ी में से कौन निकलता है, सुपरस्टार फिरोज खान। मैं फिरोज खान को देखता हूँ, 6 फुट 1 इंच, लाल लाल गाल उस आदमी के, झट से पूरा क्राउड फिरोज खान फिरोज खान फिरोज खान। मैं सब कुछ भूल गया, मैं सर सर सर सर सर माय नेम इज सुनील कपूर, सर सर सर सर सर सर एंड आई वांट टू वर्क इन फिल्म सर, एंड आई फ्रॉम फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सर, मुझे रोल दो सर सर, मैं भूल गया। एंड ही सेड, क्या यू ब्लडी यू नो यू डैमेज माय कार मैन, एंड ओके चीयर्स। गाड़ी में बैठे चले गए, पूरा क्राउड उनको देख रहा है।
0: क्या बात है भाई, गाड़ी में बैठ के वो चले तो गए, लेकिन देखिए आप भूले नहीं वो शक्ति कपूर को, जांबाज फिल्म में इतना इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने उनको दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
2: दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है. नो रियली, आई मीन इट. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज की फेयरवेल पार्टी नहीं रही है जिसमें ये गाना नहीं चला है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1988 की कयामत से कयामत तक का ये सुपर डुपर से भी ऊपर वाला गाना। और इस गाने ने सिर्फ आमिर खान को ही सेंसेशन नहीं बना दिया था बल्कि दिलीप ताहिर साहब को भी बहुत पॉपुलर कर दिया था। भाई इस फिल्म में वो आमिर खान के पापा बनते हैं और इस गाने के वीडियो के एंड में वो वहां पहुंचते हैं जहां आमिर खान ये गाना परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इन रियल लाइफ जब दिलीप ताहिर साहब कहीं भी जाते थे ना उस दौरान किसी पार्टी में गैदरिंग में वहां पे ये गाना चला देते थे। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। और बहनों भाइयों उस साल गीत माला पर पायदान नंबर एक पर था ये गाना। और उसके बाद हम सुनेंगे वो गाना जो कुछ साल पहले जी हाँ 1974 में पायदान नंबर एक पर आने से बस एक पायदान से रह गया। जी 1974 का टॉप सॉन्ग था मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एंड ऑन नंबर टू वॉज दिस आइकॉनिक सॉन्ग जिसके बगैर हर होली अधूरी है। भाई पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Rambala! Murga, murga. La fiesta la murga. ¡Mirchi, murga!
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. हाँ? अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा. शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.

0: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
1: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
2: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
3: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
4: I don't need to tell you, New Yorkers are paying more for everything. Rent, utilities, groceries, every single month. The office that's supposed to protect us, it's on the sidelines. I'm Raj Goyal. As an ACLU lawyer, I fought for the people against powerful interest every single day. Now I'm going to be your affordability watchdog. I'll take the pension fund out of the greedy hands of Wall Street and put it back into affordable housing. Holding utility companies accountable and auditing waste and fraud.
5: Raj Goyal, affordability watchdog for Comptroller.
6: Paid for by Raj Goyal for New York State Comptroller.
7: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
8: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
7: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali and music by A.R. Rahman.
9: Starring superstar Diljit Dosanjh along with Sharvari Wagh and Vedang Raina.
10: Ye pyar zeher ki tarah hota hai.
7: Releasing 12th June in cinemas near you.
10: Iski ek bhi bool andar reh gayi na, to ye aakhri samay mein chance se marne bhi nahi deta.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock, Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
16: Purani jeans. With Charu. Only on

0: किशोर कुमार को एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती थी या म्यूजिक? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे ये पूछा गया था तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: जब मैं छोटा था उस वक्त से मुझे गाने का शौक था। संगीत को मैं पहला वो देता हूँ स्थान, और एक्टिंग जो है वो बाद में आता है। जो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी हैं, बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादा, मुझे एक्टिंग वैक्टिंग मत करो, एक्टिंग छूटी होती है, एक्टिंग छूटी होती है, संगीत जो है दिल से निकल, और दिल से जो चीज निकले वो
0: सामने वाले के दिल तक पहुंच ही जाती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Did you see my new couch? We picked it up from Incanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
7: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra sahab, so how was Italy?
8: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
7: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
9: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
11: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
11: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
12: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
13: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
12: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
14: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
13: ये प्यार जहर की तरह होता है।
12: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
13: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Tera kya hoga, Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
15: Ab, mirchi kha.
17: Radio Mirchi, it's hot.
18: Purani jeans with Charu, only on

देवानंद साहब ने जीना तमान को देखा और सोचा कि मैं इसे हीरोइन बनाऊंगा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। वो बनी तो हीरोइन लेकिन पहले फिल्म से ही बहन बन गई, मतलब हरे रामा हरे कृष्णा में वो जो उन्होंने इतना आइकॉनिक रोल किया था, देवानंद की सिस्टर बनी थी, उनको उसके बाद ना सारे सिस्टर्स वाले रोल ऑफर होने लग गए। तब देवानंद साहब ने उनको कहा कि रुको जरा, सबर करो, ये रोल एक्सेप्ट मत करो। वो सारे रोल्स जीनत अमान ने रिजेक्ट किए एंड देन देव साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसमें वो एक्चुअली उनके ऑपोजिट थी एंड दैट फिल्म वाज हीरा पन्ना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। इट्स 3 PM, मिर्ची टाइम चेक, ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels। RK Jewels, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। It's 3:30 PM, मिर्ची टाइम चेक, ब्रॉट टू यू बाय RK Jewels। RK Jewels, ज्वेलरी में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 4 p.m. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
2: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
3: अपने दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
2: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान।
4: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
3: ये प्यार जहर की तरह होता है।
2: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
3: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।

दोस्तों, फ्राइडे की ना एक अलग ही साइकोलॉजी होती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, फ्राइडे आ चुका है। वैसे तो यार, ये पूरा हफ्ता ना मंडे से लेकर थर्सडे तक बिल्कुल डिसिप्लिन मोड में निकल जाता है। अलार्म्स हो, मीटिंग्स हो, डेडलाइंस हो, ईमेल्स हो, और फिर फ्राइडे शाम आती है जैसे ना किसी ने ब्रेन को ऑफिशियली परमिशन दे दी हो कि बस अब रिलैक्स हो जाओ। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि फ्राइडे का एक्साइटमेंट सिर्फ वीकेंड की वजह से नहीं होती, बल्कि उस फीलिंग की वजह से होती है कि यार अब ना कंट्रोल थोड़ा वापस हमारे पास आ चुका है। क्योंकि ड्राइव थोड़ी लाइटर लगने लगती है, म्यूजिक थोड़ा लाउडर लगने लगता है, और प्लान्स चाहे सिंपली क्यों ना हो, फिर चाहे चाय पीने का प्लान हो या बस घर पे चिल करने का हो, बस बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगता है। तो यस, फ्राइडे की शाम एक रिमाइंडर होती है कि लाइफ ना सिर्फ रूटीन नहीं, ब्रेक्स भी है। तो चलिए इसी ब्रेक के साथ आपके लिए ये अगला गाना आपके फ्राइडे की शाम को धमाकेदार बनाने के लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: se permite.
1: Escava na buscava na sacabana.
2: Trabalha.
1: Murga, murga. Na viva la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello,
4: Mr. Gotham.
3: कौन बोल रहे हैं?
4: सर मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना आप वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
3: ऐसा कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
4: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
3: हाँ, सर कुछ गाके सुनाई.
4: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
3: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह.
4: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
3: कौन से गाने
4: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा.
3: सुन ले बात, मेरी
4: बात
3: सुन, पहले बात सुन.
4: हाँ सर.
3: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
4: है. सर बोलिए,
3: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
4: जी सर.
3: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
5: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

0: Itt kiszállt, only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, Jack.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
5: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
4: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान।
6: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
5: ये प्यार जहर की तरह होता है।
4: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
5: इसकी एक भी बूंद अंदर रहेगी ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
8: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
9: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
8: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
10: Woh jo pehle tumse mila tha, ab hum sabse milne aa raha hai.
11: Pehle bhi main.
12: Singing World ka Sayyara, none other than Vishal Mishra.
13: Vishal Mishra.
10: Amit Chetty of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com and SaiUSAInc.com.
14: Searching the best diamond jewelry on

0: Oak Tree Road, Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
2: Batting to kaafi saare karte hain. Virat ek hi hota hai.
3: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
2: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
4: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शमशांदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स, ये जवानी है दीवानी का गाना बलम पिचकारी। क्योंकि यार ये वन ऑफ दो सॉन्ग्स है जिसमें होली मैडनेस फुल ऑन टॉप लेवल पे होती है। रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, उनके साथ रंग, डांस और मस्ती इतनी नेचुरल लगती है कि लगता है कि पूरी टीम बस होली खेलनी शुरू कर दी और कैमरा ऑन करके शूट हो रहा है ये गाना। लेकिन पर्दे के पीछे का चैलेंज कुछ और ही था, क्योंकि यार ये जो गाना था वो एक दिन में शूट नहीं हुआ था, काफ़ी मल्टीपल दिन लगे थे और बहुत टाइम तक शूटिंग चली थी। और हर दिन कलर्स को एग्जैक्टली सेम रखना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था, क्योंकि कौन से एक्टर के कपड़े पे कितना रंग था, किस गाल पर कौन सा कलर था, बालों में कितना गुलाल था, कंटिन्यूटी टीम को ये सब कुछ ट्रैक करना पड़ता था। क्योंकि अगर एक शूट में दीपिका के कुर्ते पे ब्लू कलर है और वो ज़्यादा हो गया और अगले शूट में कम, तो यार पूरा मैजिक टूट जाता था। तो सोचिए दोस्तों, हमसे तो होली के बाद यार अपना फोन और चश्मा भी नहीं संभाला जाता, लेकिन यहाँ पूरे गाने में हजारों रंगों का हिसाब रखा जा रहा था। तो कभी कभी स्क्रीन पे जो केयरफ्री मस्ती दिखती है ना, उसके पीछे क्लिपबोर्ड लेकर खड़ी एक कंटिन्यूटी टीम भी जरूर होती है। और ऐसी ही किसे जाने के लिए मुझे जरूर बताइए कि यार ऐसा कौन सा गाना है जो आपके लिए बहुत स्पेशल है और जिसके किस्से आपको जानने हैं। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं वन ऑफ माई फेवरेट बलम पिचकारी, ये जवानी है दीवानी का ये गाना, बहुत ही खूबसूरत सा गाना। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
8: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
8: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
7: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
9: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
10: Bombay Express and Vaishnav Caterers, the finest indoor and outdoor catering service in USA. Live cooking on premises for engagements, marriage, baby shower, birthday parties and adult daycare. We make fresh farsan and sweets in USA. Also providing daily tiffin services with delivery in New Jersey and New York. Call Bombay Express and Vaishnav Caterers today at 732-986-6241 or visit 2849 Woodbridge Avenue, Edison, New Jersey.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: It's 4:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स ऑल इज वेल फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट्स। वैसे तो यार स्क्रीन पे ये गाना फुल कॉलेज एंथम लगता है। हॉस्टल कॉरिडोर्स, मस्ती, फ्रेंडशिप और वो फेमस फ्रेज ऑल इज वेल। लेकिन पर्दे के पीछे कंपोजर शंतनु मोइत्रा ने एक बहुत ही फन एक्सपेरिमेंट किया था। यानी ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की बजाय उन्होंने यार डिसाइड किया कि चलो बॉटल्स, टेबल और जो रोजमारी के ऑब्जेक्ट्स है उसी का साउंड यूज किया जाए। मतलब जो गाना स्टूडेंट्स के बारे में था उसका म्यूजिक भी क्लासरूम और हॉस्टल वाली दुनिया से ही इंस्पायर्ड था। तो सोचिए दोस्तों, हम लोग जो टेबल पे से बीट बजाते हैं टाइम पास के लिए, किसी ने उसी को उठा के चार्ट बस्टर बना दिया। मतलब कभी कभी म्यूजिक स्टूडियो से नहीं, कैंटीन से शुरू होता है। और ऐसे ही पर्दे के पीछे की बातें जानने के लिए मुझे जरूर फॉलो करना ऑन इंस्टाग्राम और जी मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और ये बताना कि ऐसा कौन सा खास गाना है जिसके पर्दे के पीछे की बातें आपको जाननी है। फिलहाल बजाते हैं All Is Well from the movie Three Idiots right here on Mirchi, it's hot।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
5: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
6: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
8: Listener mein back to back gana sunega,
9: back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पहली बार सुनते ही मूड हल्का कर देते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और ऐसा ही फील आ रहा है एक नए गाने से, मस्करा फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा। बस इसका म्यूजिक दिया है AR रहमान ने, लिरिक्स लिखे हैं इरशाद कामिल ने और गाने को आवाज दी है वेदांग रैना और निलंजना घोष ने। ऑनेस्टली इस गाने में ना कोई हैवी हार्ट ब्रेक, ना कोई इंटेंस ड्रामा है, इसका चार्म ही उसकी प्लेफुलनेस है। थोड़ी सी शरारत, थोड़ा फ्लर्टिंग वाला कॉन्फिडेंस और वो फीलिंग जब किसी की एक स्माइल ना पूरे दिन को अमेजिंग बना देती है। और जी हाँ, मस्करा टाइटल भी बिल्कुल परफेक्ट लगता है, क्योंकि यार गाना सुनते वक्त लगता है कि जैसे कि किसी की आंखों की तारीफ हो रही हो, लेकिन वो कॉलेज वाली टीजिंग, वो नजरों वाली कॉन्वर्जेशन और वो एक्साइटमेंट जब किसी को देखते ही ना मूड ऑटोमेटिकली बन जाए, ना कि कोई पोएटिक हैवी लाइन से। ये जो म्यूजिक है वो रहमान सर का है, लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब भी हम रहमान सर के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ग्रैंड मेलोडीज या सोलफुल ट्रैक्स याद आते हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने गाने को बहुत ही लाइट और ब्रीजी रखा है। इरशाद कामिल के लिरिक्स और भी ज़्यादा मस्ती और प्यारा बना देते हैं इस गाने को। और सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि गाना खुद को बहुत सीरियसली लेता ही नहीं है। तो आजकल के इतने सारे रोमांटिक्स ट्रैक है जो यार इमोशंस में बिल्कुल डुबा देते हैं, लेकिन मस्करा में एक अलग ही फ्रेशनेस है। ऐसा गाना जो ड्राइव पर भी चले, फ्रेंड्स के साथ भी चले और रैंडम स्माइल भी दे जाए। तो ऑनेस्टली दोस्तों, कभी कभी ना प्लेलिस्ट को भी ऐसे गाने की जरूरत होती है जो दिल को हैवी नहीं, हैप्पी कर दे। तो आज आपके लिए ये गाना बजाते हैं, लेकिन आप भी मुझे बताइए विच इज दैट सॉन्ग जिसको सुनते ही आपका मूड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और बजाते हैं वो गाने यहाँ पर। फिलहाल आपके लिए मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात से
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ तीन
2: ऐसी करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।

0: हेलो,
1: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
0: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
0: नहीं नहीं
1: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। जुबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
0: कुकड़ुकु
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
6: मैं दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
5: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
7: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
6: ये प्यार जहर की तरह होता है।
5: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
6: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
8: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
9: चमकते सितारे 2026.
8: From graceful Kathak to high energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें, मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुरा कर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
13: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
14: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
15: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: की टाइम। शुक्र करो शुक्रवार आ चुका है दोस्तों, शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बदलता मौसम, बदलते वीकेंड के प्लान्स और बदलते मार्केट कंडीशंस, ऐसे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बदलते हालातों में, क्योंकि यार मॉर्गेज रेट्स भी तो बदल रहे हैं। तो वही सारी डिटेल्स हमें देने आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो शुक्रवार है भाई और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। इट विल बी नाइस हॉट वीकेंड एंड श्योरली परफेक्ट वेदर फॉर होम बायर्स टू विजिट ओपन हाउसेस। एंड टुडे द यूएस मार्केट्स फेल एंड जॉब रिपोर्ट स्मैशेस एक्सपेक्टेशंस विद पेरोल ग्रोथ एंड मॉर्गेज रेट्स ट्रिकल्ड अप अगेन। अ गुड न्यूज दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद आवर लिसनर्स इज दैट नाउ अगेन लेंडर्स आर एग्रेसिवली लेंडिंग ऑन कॉन्डोमिनियम्स एंड टाउन होम्स। ओनली एक्सेप्शन इज स्ट्रक्चरल डैमेजेस। So if you are buying a condo or townhouse, please don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Buying your dream home, Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, the 30-year fixed mortgage rate, 6.25%. 20-year fixed mortgage rate, 6.125%. 15-year fixed mortgage rate, 5.625%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And I'll spell it out. It is lionmtg.com. Also, two products, very, very popular. I'm repeating it again and again. Number one, investment property, 25% down payment. You can buy your investment property under an LLC. And no income documentations are required. And the rates are also phenomenally low. And number two, closed and second loans. If you already own a home and have equity, we are doing second loans and the rates are also, you can get it like for fixed for like 30 years and 20 years. So friends, once again, buying your dream home or refinancing, don't hesitate to call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe everybody. Have a wonderful weekend. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: कुछ आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
7: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी proudly present an enchanting musical concert by classically trained Dr. Meenal Mategaonkar का एक timeless musical concert, जिनका साथ देंगे renowned तबला artist अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
6: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
8: अभी न जाओ छोड़ कर।
7: 28 जून 3 p.m. at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
9: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: It's 5:30 PM. Mirchi time check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry में सिर्फ एक ही नाम, RK Jewels. Best quality, best price.
13: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
14: दोस्तों, जून का पहला वीक ऑलमोस्ट खत्म होने आ चुका है। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और पता नहीं क्यों यार, जून का पहला वीक ना हमेशा एक फ्रेश नोटबुक जैसा लगता है। मतलब समर ऑफिशियली डोर से हेलो बोल रहा होता है, शाम में लंबी हो जाती है और दिन में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है, क्योंकि मई के प्लान्स या तो अभी कंप्लीट हो चुके हैं या फिर ऑफिशियली जून में पुश कर दिए जा चुके हैं। और जैसे ही जून का पहला वीक खत्म होता है ना, तो एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ आती है कि यार साल का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा निकल चुका है और जो जनवरी में हमने रेजोल्यूशंस बनाए थे वो सारे याद आते हैं और फिर हम थोड़ा हंस लेते हैं और बोल देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जून से रीस्टार्ट कर लेंगे। लेकिन ऑनेस्टली जून का मूड रेजोल्यूशन वाला होता ही नहीं है। ये मंथ ज़्यादा एक्सपीरियंसेस वाला होता है, लॉन्ग ड्राइव्स, आउटडोर कंसर्ट्स और इवनिंग वॉक्स। और ये जो सारी चीज़ें ना जो हम विंटर में सिर्फ प्लान करते हैं, बस ऐसा लगता है कि अब इन प्लान को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। तो आज की फ्राइडे शाम का बस एक ही थॉट है कि जून की शुरुआत तक कैसी जा रही है दोस्तों, जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI, फास्ट फन या फुल ऑन समर मोड। क्योंकि यार मेरा जो जून का मूड है उसको एक शब्द में अगर मैं बताऊं तो वही अगला मूड होगा, वही अगला गाना होगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
4: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
5: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
6: पहले भी मैं तुमसे मिला।
7: Singing world का सैयारा, none other than Vishal Mishra.
8: Vishal Mishra.
5: JT of Sai USA Inc. presents A Night Larger Than Life, Vishal Mishra's Pagalpan Tour. Friday, June 26th, Hard Rock Live, ETS Arena, Atlantic City. Book your tickets at Ticketmaster.com
9: and SaiUSAInc.com.
10: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
11: Kohli goes down the ground, Kohli goes out of the ground.
10: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
12: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जहां इतने सारे गाने बनते हैं, कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप होते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसका हर एक गाना दिल को छू जाता है। और 2008 की रिलीज दोस्ताना का एल्बम, ओ हो हो, इट वॉज वन दैट एल्बम जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। विशाल शेखर कंपोज, जिसके सारे गाने इतने अमेजिंग थे, लेकिन जब दोस्ताना रिलीज हुई थी और टीवी पे ये गाना रिलीज हुआ था तो माय गॉड, माइंड ब्लो हो गया था। जी हाँ, मतलब नॉर्मली ऐसे टीवी पे नॉर्मल कलर्स दिखते हैं, लेकिन सडनली एक दिन ब्लू पानी दिखने लगा। उसमें जॉन अब्राहम अपनी अमेजिंग सी स्माइल लेकर मायामी बीच पे दिखाई दिए विद शिल्पा शेट्टी डूइंग शट अप एंड बाउंस। माय गॉड, दैट सॉन्ग नॉट जस्ट ब्लू माय माइंड विजुअली बट ऑल्सो ब्लू माय माइंड म्यूजिकली, क्योंकि सुनी चौहान की आवाज और अमेजिंग सा ये गाना मायामी बीच पर शॉट, कि जब मायामी जाओ तो ये गाना दिमाग में प्ले ना हो, बैकग्राउंड में ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज बातें करते हैं दोस्ताना के एल्बम के बारे में, एंड स्टार्टिंग विद दिस वन सॉन्ग शट अप एंड बाउंस राइट हियर ऑन मिर्ची। तो आपके लिए मैं बजाने वाली हूँ शट अप एंड बाउंस, लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, बिकॉज इट्स गोना बी शट अप एंड बाउंस बाय सुनिधि राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 6 p.m. Mirchi Time Check, brought to you by RK Jewels. RK Jewels, jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels, best quality, best price.
2: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
3: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
2: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा। A film by Imtiaz Ali and music by A.R. Rahman.
4: Starring superstar Diljit Dosanjh along with Sharvari Vaagh and Vedang Raina.
3: ये प्यार जहर की तरह होता है।
2: Releasing 12th June in cinemas near you.
3: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना, तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
5: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
6: With Mirchi, fresh maal.
7: High voltage beats और unstoppable groove के साथ सुनो माशुका।

0: इस गाने को गाया है महमूद, अमिताभ भट्टाचार्य, राघव चैतन्य और रुआ के ने। म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म कॉकटेल 2 से सुनते रहिए माशुका, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
2: Sham Shandar, let's do non-donkey, have a funky time।
3: एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और 2008 में एक ऐसा ही एल्बम बना था जिसका यार हर एक गाना एक से बढ़कर एक था। बात हो रही है दोस्ताना मूवी की, या जिसका म्यूजिक दिया था विशाल और शेखर ने और जिसको प्रोड्यूस किया था हमारे करण जौहर ने। वैसे तो यार शराब एंड बाउंस इस मूवी का सबसे ज्यादा फेमस गाना था, और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मायामी जा रहे हो और जॉन को इमेजिन ना करो, शिल्पा शेट्टी को इमेजिन ना करो और ये गाना बैकग्राउंड में प्ले ना करो। लेकिन और एक गाना है इस मूवी का जो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फन है, एंड दैट इज मादा लाडला बिगड़ गया। मतलब माँ को अगर डायरेक्टली आपको डांटना नहीं है तो आजकल माए मादा लाडला बिगड़ गया ही कह देती है। और जिस तरह से किरण खेर ने चिल्ला कर जोर से कह दिया था हाय रब्बा मैनु चख ले यार, उस वजह से वो लाइंस एक्चुअली गाने में थी ही नहीं, लेकिन वो इतने फीलिंग्स के साथ बोली गई थी कि विशाल शेखर ने डिसाइड किया कि ये जो पैच है ये हम गाने में एक्चुअल गाने में भी यूज करेंगे। तो इसलिए बीच बीच में आपको किरण खेर की आवाज भी आएगी कि हाय रब्बा मैनु चख ले। बस माँ के जो फीलिंग्स है उसे विशाल शेखर जैसे कंपोजर्स भी बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर पाए, उन्होंने उनका पैच उस गाने में रखा और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये गाना हिट हुआ है। तो चलिए सुनते हैं मादा लाडला बिगड़ गया फ्रॉम दोस्ताना। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस मूवी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ Mirchi Siddhi SIDDHI। और तब तक के लिए मादा लाडला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana.
1: Rabana.
0: Burga, burga. La virgua, la burga.
1: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो उसका वहां से मत उठाओ यार। हेलो
2: हेलो
3: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन?
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार। कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है।
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे
4: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
6: एक सपना, एक वादा और एक सफर जो दिल को छू जाए।
7: दिल के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं।
6: देखिए 12 जून एक ऐसी कहानी जो प्यार, समय और हौसले से आगे है। मैं वापस आऊंगा, अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
8: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाघ एंड वेदांग रैना।
7: ये प्यार जहर की तरह होता है।
6: रिलीजिंग 12 जून इन सिनेमाज नियर यू।
7: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
9: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज जूल्स, किंगडम ऑफ जूल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
10: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
11: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
12: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
13: Chamakte Sitare 2026.
12: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
14: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
15: आवाजें होती हैं जो सीधा दिल तक पहुंचती हैं।
16: सतीश मलिक और अनीमा जौहरी प्राउडली प्रेजेंट एन एंचेंटिंग म्यूजिकल कॉन्सर्ट बाय क्लासिकली ट्रेन्ड डॉक्टर मीनल मटेगांवकर का एक टाइमलेस म्यूजिकल कॉन्सर्ट, जिनका साथ देंगे रिनाउंड तबला आर्टिस्ट अभय दातर और हारमोनियम उस्ताद निनाद जोशी।
15: और इस खास शाम में एक दिल को छू लेने वाला ट्रिब्यूट टू आशा भोसले।
17: अभी न जाओ छोड़ कर।
16: 28th June 3 PM at ITV Gold Auditorium, Oak Tree Road. Call Satish right now at 862-812-9111.
18: तेरा क्या होगा कालिया?
19: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
18: अब मिर्ची खा।

0: Radio Mirchi. It's hot.
1: Let's go now, donkey, have a funky time. शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका फैशनेबल फ्राइडे में। जी हाँ दोस्तों, देखिए शाम तो ढल रही है और जितनी ज्यादा मतलब अभी मई ऑलमोस्ट खत्म होने आया है और जून शुरू होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हमारा गोल्डन आर भी शुरू हो चुका है विथ नन अदर देन आर गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल। तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का फैशनेबल फ्राइडे के गोल्ड डिकोडर सीरीज में, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। नमस्ते बॉबी जी एंड वेलकम टू टुडेज शो।
2: हैप्पी फैशनेबल फ्राइडे टू यू सिद्धि जी, एंड दोस्तों आप सबको भी ब्यूटीफुल वार्म इवनिंग। सिद्धि जी, फर्स्ट टू स्टार्ट विद द गोल्ड प्राइस ट्रेडिंग एट $4,540 $4,540 पर ट्राई अउंस ट्रेड कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली राज ज्वेल्स की टीम के साथ इन्वेस्ट करें। सिद्धि जी, आप तो रोज अवेयर रहती हैं गोल्ड के प्राइस के साथ, बिल्कुल तो मैं आपके क्वेश्चन के लिए तैयार हूँ।
1: देखिए बॉबी जी, कल परसों की ही बात है जब थोड़ा सा गोल्ड डाउनवर्ड ट्रेंड में गया था, और जैसे जैसे वीकेंड आना शुरू होता है मुझे तो लगता है शायद खबर फैल जाती है कि अब लोग शॉपिंग करना शुरू करने वाले हैं, फिर चाहे वो ग्रेजुएशन प्रेजेंट्स के लिए हो, वेडिंग सीजन के लिए हो, या फिर अपनी एनिवर्सरीज। क्योंकि आप अगर नोटिस करोगे बहुत सारे एनिवर्सरीज मई और जून में आते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे मुहूर्त होते हैं, तो शायद खबर फैल जाती है और इसलिए थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड पे आज गोल्ड है, राइट?
2: इसलिए बोलते हैं ना, को प्यारा सा गाना है, धीरे धीरे बोल कोई सुनता नहीं। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि हम तो रोज इतना, मैं और सिद्धि जी दोस्तों के साथ रोज शेयर करते आए हैं, गोल्ड $4,400 का लेवल टच कर, $4,370 का लेवल टच करके वहां पे 4,540 पर ट्रायउंस आ गया है। सिद्धि जी, जैसे गोल्ड का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड लेता है, देखिए मेमोरेबल मोमेंट्स, चाहे वो शादी की सालगिरह हो, प्रपोजल रिंग हो, ग्रेजुएशन पार्टी हो, या आने वाली एंगेजमेंट के लिए आप खूबसूरत सा नेकलेस देख रहे हो, तो गोल्ड का प्राइस जो है डेफिनेटली बहुत मैटर करता है कि आप अपने डॉलर्स में एक बजट बना के चलते हैं कि अगर मुझे सपोज करिए $5,000 में गोल्ड ज्वेलरी लेनी है, तो अगर गोल्ड का प्राइस $130 पर ट्रायउंस, $130 पर ग्राम ट्रेड कर रहा था 3 दिन पहले, और आज $134 हो गया है 22 कैरेट का 1 ग्राम का प्राइस, सो आपके हिस्से में उतने ही डॉलर्स में कम सोना आएगा। तो यही हम आपको बताना चाहते हैं कि गोल्ड का प्राइस अपवर्ड ट्रेंड पर है। अगर पिछले साल से आज के सोने के भाव की कंपैरिजन की जाए तो $3,300 पर ट्रायउंस आज के दिन गोल्ड ट्रेड कर रहा था 1 साल पहले। आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि कितनी परसेंटेज एप्रिसिएशन हुई है, और सिद्धि जी आपकी वो धीरे धीरे कहीं बात कोई सुन ना ले गोल्ड का प्राइस और बढ़ ना जाए, उससे पहले मैं दोस्तों को इन्वाइट करूंगा राज ज्वेल्स के साथ 0% इंटरेस्ट 0% डाउन पेमेंट में आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए ज्वेलरी आप घर लेके जाएं और 9 किश्तों में पैसे दें। कैसे आइए, राज ज्वेल्स आपको रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करना है एजुकेट करने के लिए तैयार है। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
1: थैंक यू बॉबी जी, और दोस्तों ऐसी ही हमारी बातचीत यहाँ पे हर गोल्डन आवर में जारी रहेगी, तो हर वीक हर दिन आप यहाँ पर इस गोल्डन आवर में आ सकते हो। और आपके भी अगर कोई सवाल है बॉबी जी के लिए तो मुझे जरूर इंस्टा कीजिए @rjmirchisiddhi siddhi, और आज ही विजिट कीजिए rajjewels.com। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: It's 6:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels. Jewelry mein sirf ek hi naam. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shardar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम बन जाए जिसका हर एक गाना दिल को छू जाए। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बना था और बिल्कुल बना था। 2008 में एक ऐसा एल्बम बना था दोस्ताना, जिसका यार हर एक गाना दिल को छू गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट पार्टी सॉन्ग्स जो इसी मूवी से, इसी म्यूजिक एल्बम से निकला है, That is a Desi Girl, sung by Shankar Mahadevan, Sunidhi Chauhan and Vishal Dadlani. ये पूरा का पूरा एल्बम ही वैसे तो यार विशाल शेखर ने बनाया है, लेकिन ये जो गाना है वो काफी खास है, क्योंकि इस गाने ने ना प्रियंका चोपड़ा को एक आइडेंटिटी दी। जी हाँ, मतलब प्रियंका चोपड़ा वैसे तो इस मूवी में लहरों में एंट्री मारते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन इस गाने के बाद देसी गर्ल हर शादी का एक एंथम भी बन गया। और हमें भी कहाँ पता था कि प्रियंका भी इंटरनेशनल हो जाएगी और उनकी एक आइडेंटिटी ही बन जाएगी, देसी गर्ल। तो जी हाँ, देसी गर्ल वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम। वैसे तो हम शट अप एंड बाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप मादा लाला तो सुन ही चुके हो, तो चलिए आपके लिए बजाते हैं देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिस एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए देसी गर्ल राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
0: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and SaiUSAInc.com.
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
0: Chamakte Sitare 2026.
3: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
4: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
5: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में, जहां हम बातें कर रहे हैं एक ऐसे खास एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। जी हां, बात हो रही है 2008 में रिलीज दोस्ताना मूवी की, जिसके जो गाने हैं वो कम्पोज किए हैं विशाल शेखर ने। और क्या कम्पोज किए, मतलब एक से बढ़कर एक गाना है इस एल्बम में। और वैसे तो हम इतने सारे गाने प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है रौनक पटेल से, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। उन्होंने कहा है कि यार जब भी कोई ट्रिप जाती है और दोस्त साथ में होते हैं तो ये गाना तो हमेशा बजता ही है उस ट्रिप में फ्रॉम दिस मूवी, क्योंकि ये गाने का एक टैगलाइन है, तू है तो आई विल बी ऑल राइट। और हर बार दोस्तों के साथ यही फील होता है कि भाई तू है ना तो आई विल बी ऑल राइट। तो जी हाँ, चलिए इसी फीलिंग के साथ रौनक पटेल की रिक्वेस्ट पर ये गाना बजाते हैं फ्रॉम द मूवी दोस्ताना, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एल्बम्स। तो दोस्तों आप भी मुझे बताइए ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जिसके सारे गाने आपको पसंद है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार बजाते हैं ना उसके सारे गाने यहाँ पर, और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

की टाइम। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में यार, जिसका हर एक गाना धमाकेदार है, दिल को छू जाने वाला है। जी हाँ, 2008 की रिलीज दोस्ताना मूवी, जिसे प्रोड्यूस किया था करण जौहर ने और जिसका म्यूजिक कंपोज किया था विशाल शेखर ने, यार क्या एल्बम बनाया, हर एक गाना दिल को छू जाने वाला था। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आपसे आई है, दैट रिक्वेस्ट इज फ्रॉम प्रियंका। और प्रियंका कहती है, वैसे प्रियंका रहती है जर्सी सिटी में, लेकिन वो फिलहाल विजिट कर रही है एडिसन, अपने यू नो पार्टनर से मिलने आई है। और जब भी वो लोग डेट नाइट्स पर जाते हैं तब ये गाना बहुत बार वो अपने प्लेलिस्ट में बजाते हैं, एंड दैट इज खबर नहीं इट्स एन आयरनी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डेट पे कहाँ जाना है यही हमको खबर नहीं होती, लेकिन ये जो गाना है श्रेया घोषाल की आवाज़ में बहुत ही ब्यूटीफुल गाना है, तो श्रेया घोषाल एंड शान की आवाज़ में। तो चलिए आज प्रियंका के लिए ये गाना प्ले करते हैं, आयरॉनिकली उनका नाम भी प्रियंका है एंड शी इज़ गोना लव दिस सॉन्ग। तो चलिए आज प्रियंका के लिए खबर नहीं प्ले करते हैं, लेकिन आप भी दोस्तों मुझे बता सकते हो विच इज दैट वन एल्बम जिसका हर एक गाना बहुत अमेजिंग है और आप कभी स्किप नहीं कर पाते हो। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि मेरा तो काम ही है आपके लिए वो गाने प्ले करना, राइट हियर ऑन मिर्ची। और कहाँ, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iscaba la puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virba la burga. Mirchi, burga.
1: Hello,
2: Mr. Gotham. Sir, I actually asked a request for a time. I asked for that singing, winging, sikate, sir. So, sir, gaane ka thoda shauk hai. Main jo gaane gaata hu na, wo sir thoda different hote hain.
1: Aise kaise bol sakta hu jab tak aapko sunayenge nahi?
2: Pehle mohalle mein hamare snake nikla tha. तो स्नेक का ही घुस गया था तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में सर नागिन क्या है सर नगीना फिल्म देखी आपने नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने
1: सर कुछ गा के सुनाइए
2: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है एनाकोंडा आपने एनाकोंडा फिल्म देखी है
1: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह
2: वही सर एनाकोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को
1: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं उसने काम किया एनाकोंडा में यही बात है मेरे लिए मैं एक पेशकश कर रहा हूँ तन डोले मेरा मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे कौन बजाए बांसुरिया सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा
1: सुन ले बात मेरी
2: बात सुन
1: पहले बात
2: हाँ सर
1: और जब बंद करिए बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
2: है सर बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते समझ गया ना तू बात है
2: जी सर
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है छोटा सा मजाक किया है मुर्गा बन गया आपका
1: Ha ha ha.

0: और हौसले से आगे है, मैं वापस आऊंगा। अ फिल्म बाय इम्तियाज अली एंड म्यूजिक बाय एआर रहमान,
1: स्टारिंग सुपरस्टार दिलजीत दोसांझ अलोंग विद शर्वरी वाग एंड वेदांग रैना।
2: ये प्यार जहर की तरह होता है।
0: रिलीजिंग 12th जून इन सिनेमाज नियर यू।
2: इसकी एक भी बूंद अंदर रह गई ना तो ये आखिरी समय में चैन से मरने भी नहीं देता।
3: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
4: चमकते सितारे 2026.
3: From graceful Kathak to high energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
5: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 732-357-8200। जय गुरु।
6: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
7: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
7: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
6: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Mirchi, fresh maal.
11: Retro magic or dance floor energy ke saath. Suno chunari chunari, let's go.

इस गाने को गाया है आईपी सिंह, जोनिता गांधी, असीस कौर, सुधीर यदुवंशी और अनुराधा श्रीराम ने। म्यूजिक दिया है अक्षय एंड आईपी और अनु मलिक ने। लिरिक्स लिखे हैं समीर अंजान और आईपी सिंह ने। फिल्म है जवानी तो इश्क होना है से। सुनते रहिए चुनरी चुनरी लेट्स गो ओनली ऑन मिर्ची इट्स ऑन। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज का हंगामा आ रहा है एक ड्रीमी सॉन्ग के पीछे से। जी हाँ, पहला नशा। अब ये गाना आपने पर्दे पे तो देखा ही होगा, तो जब हम ये गाना पर्दे पे देखते हैं ना, तो यार लगता है कि एकदम स्लो मो में चल रहा हो। मतलब आमिर खान और आयशा झुलका के बीच वो ड्रीमी वॉक, एकदम फर्स्ट लव वाइब। पर पर्दे के पीछे की बात तो ये है कि उस वक्त बॉलीवुड में स्लो मो कैमरा टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, तो डायरेक्टर मंसूर खान ने जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि एक्टर्स को ना अब लिटरली स्लो मो में रन और मूव करना है, और बाद में कैमरा स्पीड और एडिटिंग से वो स्लोमो वाला इफेक्ट क्रिएट किया गया। मतलब रोमांस स्क्रीन पे तो बिल्कुल स्मूथ था और पर्दे के पीछे सब बस धीरे धीरे चल रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड में भी ना ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। वैसे आप भी बताना कि पहला नशा सुन के आपको किसकी याद आती है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: दौड़ भाग भरी जिंदगी में अपनी सेहत को सिर्फ 30 मिनट दीजिए, योग कीजिए।
1: विश्व को भारत का उपहार, योग है अच्छी सेहत का आधार। आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन का प्रण लें, हर दिन 30 मिनट योगा करें।
0: मिर्ची द्वारा स्वस्थ हित में जारी।
2: Celebrate yoga with us at 125 Raritan Center, Parkway Edison, New Jersey, Sunday, June 14, 2026, 10 a.m. For more details, call 732-470-5598
3: on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot
2: in association with World Vegan Vision.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
7: वो जो पहले तुमसे मिला था, अब हम सबसे मिलने आ रहा है।
2: सिंगिंग वर्ल्ड का सैयारा, नॉन अदर देन विशाल मिश्रा।
7: अमित जेटली ऑफ साई यूएसए इंक प्रेजेंट्स अ नाइट लार्जर देन लाइफ, विशाल मिश्रा'स पागलपन टूर, फ्राइडे जून 26th, हार्ड रॉक लाइव, ईटेस अरीना, अटलांटिक सिटी। बुक योर टिकट्स एट ticketmaster.com एंड saiusainc.com।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: 30 years of magic. Tonight, the legacy comes alive.
11: Chamakte Sitare 2026.
10: From graceful Kathak to high-energy Bollywood, experience the celebration. June 20th at Colonia High School. Call 732-404-1900 or visit indianicaacademy.com.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: एक महीना, सिर्फ एक महीना भी काफी है जिंदगी बदलने के लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और चलिए आज बात करते हैं नई बिगिनिंग्स की। कभी सोचा है कि एक छोटी सी ट्रेनिंग आपको एक बड़ा करियर दे सकती है? जी हाँ, फ्लेबोटॉमी टेक्नीशियंस, हाँ वही लोग जो हॉस्पिटल्स में हर दिन केयर का पहला कदम होते हैं। AIMS एजुकेशन में सिर्फ एक मंथ की ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप भी बन जाते हो हेल्थ केयर फील्ड के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा। ऑनलाइन और कैंपस दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल भी है और ड्यूएबल भी। तो अगर आप भी एक सेफ, केयरिंग और सिक्योर प्रोफेशन चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन एट 9082220002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu और डिस्कवर कीजिए वो एक सिप ऑफ चेंज जो आपकी जिंदगी में केयर और ग्रोथ दोनों लाएगा। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।
1: It's 7:30 PM. Mirchi Time Check. Brought to you by RK Jewels. RK Jewels, diamond jewelry ki first choice. RK Jewels, best quality, best price.

0: ही रहना। Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Vishal Mishra, live in New Jersey. Friday, June 26th, Hard Rock Atlantic City. Book at Ticketmaster and PsyUSAInc.com.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स।
5: लिसनर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टाटा सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।